सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं।

0: हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मैं वास्तु कृष्णा हूं और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो समझा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। अर्जुन माध्यम है, लेकिन अर्जुन के स्थान पर हम सभी को खुद को खड़ा कर लेना चाहिए। यानी भगवान अर्जुन को जो बता रहे हैं वो हम सभी के काम की बात है। हम सभी के लिए वो अर्जुन को जो प्रेरणादायक श्रीमद् भागवत गीता सुना रहे हैं वो हमारे लिए है, ऐसा हमको सोचना चाहिए। भगवान कहते हैं कर्म और कर्तव्य, यानी कर्मा एंड ड्यूटीज, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसीलिए पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ में हमको हमारा काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते चले जाओ। इसका अर्थ ही कभी नहीं, जैसा कि बहुत बार आपने लोगों को सुना होगा ये कहते हुए, कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। यहां पर इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, निष्काम भाव से अपने कर्म करो, फल एक दिन आपको जरूर मिलेगा।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यह है मेरठ का नंबर वन सो भारतीय आजाद हिंद रेडियो। मैं हूं वास्तु कृष्णा। मन पर नियंत्रण करना सीखिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, मन ही हमारा परम मित्र और परम शत्रु भी है। जिसने अपने मन को जीत लिया हो, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अभ्यास और वैराग्य से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। हम सभी आज के समय अक्सर परेशान होते हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, तनाव में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल के बाहर है। हम अपने मन के वशीभूत होकर बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। हम अपने आप को सर्वोपरि या बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। हम मतलब हमारा मन ऐसा करता है। कई बार जिन लोगों का परहेज होता है खाने का, वो परहेज तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन करता है। तो ये जो मन होता है ना, अगर ये मन आपके कंट्रोल में होगा तो आपका परम मित्र है, और अगर ये कंट्रोल के बाहर है तो यही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता की चर्चा जारी रहेगी सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरठ का नंबर वन सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो है। एक किताब है द सीक्रेट, सबसे गहरी बात, एक सबसे अच्छा मैसेज इस किताब से मैं आपको ये देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। किताब हमको ये सिखा रही है कि दिमाग एक चुंबक की तरह है, आप जैसा सोचते हैं वैसी ही परिस्थितियों और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप लगातार डर और कमी के बारे में सोचेंगे तो जीवन में वही मिलता चला जाएगा। अपनी सोच को बदलिए, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। द सीक्रेट, कभी ना कभी आपने किताब जरूर पढ़ी होगी या इसकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी देखी होगी, कुछ ना कुछ आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। और इस किताब के बारे में डिटेल में प्रोग्राम हमने अपने कार्यक्रम में कई बार बनाया है। तो किताब हमको सिखाती है कि दिमाग एक चुंबक है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होता चला जाएगा। पॉजिटिव सोचिए, सब अच्छा सोचिए। जिंदगी कितनी भी गहरी पटखनिया क्यों ना दे रही हो, कितनी भी ज्यादा पीड़ादायक स्थिति क्यों ना हो, आप कितने भी बुरे समय से क्यों ना गुजर रहे हो, क्या आप पॉजिटिव रह सकते हैं? कि कितना बुरा वक्त चल रहा है, कितनी परेशानियां हैं, चारों तरफ से जिंदगी पटखनियां दे रही है, लगातार आपको हार का सामना करना पड़ रहा है, अपमान का सामना भी करना पड़ता है, हालात बुरे से बुरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक अच्छी सोच के साथ बैठे हुए हैं, आप बेहतर के बारे में सोच रहे हैं। यही सिखाती है द सीक्रेट बुक।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में, भगवान अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं आत्मा की अमरता के बारे में। भगवान कहते हैं, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न ही आग जला सकती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है और नया धारण करती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो हमेशा शाश्वत है, अमर है, अजर है, जिसे ना कोई मार सकता है, ना उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है। इसीलिए कभी भी किसी परम प्रिय पूज्य या जो दिल के बड़े करीब होते हैं, जब वो अचानक हमको छोड़कर चले जाते हैं तो मन बड़ा खिन्न रहता है, परेशान रहता है। अगर जीवन में ऐसी कोई पीड़ा है, परेशानी है कि हमारा कोई बहुत घनिष्ठ हमें छोड़कर चला गया, किसी का साया सर से उठ गया और हम इस वजह से परेशान हैं, तो यहां पर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि उनका केवल शरीर गया है, वो नहीं गए। आप उनके लिए प्रार्थना करें भगवान से। भगवान कहते हैं, जो भी शुरू होता है मुझसे शुरू होता है और जो भी खत्म होता है मुझ पर ही खत्म होता है। इसीलिए अगर आपका कोई परम पूज्य, कोई परम प्रिय या जो भी जिनको आप बड़ा प्रेम करते थे, अब वो आपके साथ नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान जरूर देंगे। यही श्रीमद् भागवत गीता की सीख है।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं वास्तु कृष्णा हूँ। ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम हमेशा हमें रखना चाहिए, यानी डिवोशन एंड लव अपने गॉड के प्रति, जिनको हम पूजते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे भगवान हैं, ईश्वर हैं। अपने मन को मुझसे भरो, मुझसे प्रेम करो, यही मेरी सेवा है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अपने हृदय में मुझे खोजता है वो अंततः मेरे साथ मेरा ही हो जाता है, मुझ में ही मिल जाता है। जो भक्त प्रेममयी भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। सुख हो या दुख हो, ईश्वर की शरण में जाने पर परम शांति मिलती है। इसीलिए भगवान की इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान हमको सिखा रहे हैं कि दुनिया में हार जीत कुछ नहीं, मृत्यु और जीवन कुछ नहीं, यश और अपयश भी कुछ नहीं। सब कुछ मुझसे शुरू होता है और मुझ पर ही खत्म होता है, और मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी यहाँ हिल नहीं सकता। यही सच्चा समर्पण होगा ईश्वर के प्रति। भगवान को कोई लालच नहीं जिता सकता। भगवान कहते हैं, आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन और आपका प्यार, आप कैसे बात करते हैं भगवान से, कैसा फील करते हैं, दुनिया को क्या दिखाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही पर्सनल संबंध होता है हर मनुष्य का अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति, कि जब हम परेशान होते हैं तो आंख बंद करके अपने भगवान से क्या बात करते हैं। यही आपका भरोसा है, यही आपकी भक्ति है और यही आपका प्रेम है ईश्वर के प्रति। उन पर अटूट विश्वास, भरोसा हमको रखना चाहिए।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभ आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।

0: जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, ये कार्यक्रम है सेहत सही लाभ कई। स्मार्ट एनजीओ के साथ मिलकर ये एक ऐसा कार्यक्रम हम बना रहे हैं, चला रहे हैं, जहाँ पर जन जागरूकता की बात होती है। हम गांव-गांव भी जाते हैं, हम लोगों से बात भी करते हैं और यहाँ बात होती है आने वाले वक्त के बारे में भी। आज के इस खास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? हमारे मन में आता है अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल और अच्छे टीचर्स, अच्छा माहौल, है ना। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को पढ़ाई शुरुआत में अच्छी मिल जाए तो उसका भविष्य खुद ब खुद संवर जाता है। बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर उसे अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी जो एक यात्रा होती है ना बच्चे की, जो शुरू हो चुकी होती है, उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है कि आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी। मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से पहले ही शुरू हो जाता है। जरा और पीछे अगर चले तो क्या जन्म के बाद की हम बात करें? जी नहीं, उससे भी पहले, यानी बच्चे के जन्म से पहले भी एक यात्रा शुरू हो जाती है हर बच्चे की। अब आपकी उत्सुकता थोड़ी बड़ी होगी कि आखिर हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का ये कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन की मजबूत शुरुआत मिलती है। यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है। जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भाशय, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की ओर ले जाती है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है। और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर इतना जोर दिया जाता है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा में भी हमें यही संदेश दिया कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है। यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बन जाती है। और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो महत्वपूर्ण मेहमानों को मैंने बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पहले भी आपने इनको सुना है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेहतिया सिंह जी और हमारी साथी टीकन देवी जी। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी।
1: धन्यवाद आरजे जी, और सभी श्रोताओं को मेरा राम राम।
2: नमस्कार श्रोताओं जी, और सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।
0: सेहतिया जी, अभी हमने बात की बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण है?
1: बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और ये केवल गर्भावस्था की बात ना है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिले है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसे काम करने की ऊर्जा रहती है, वो कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल भी कर पावे है। लेकिन जब भी महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना नहीं रहता, घर में पल रहे बच्चे का मिलने वाला हर पोषण उसके शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी ही बेहतर होगी।
2: यानी कि मैं ये कह रही थी कि सेहतिया जी, जो माँ खाती पीती है क्या उसका असर सीधे बच्चे तक पहुँचता भी है या नहीं?
1: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसका दिमाग का विकास भी माँ के स्वास्थ्य और पोषण पर ही निर्भर करे है।
0: यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
1: बिल्कुल सही कहा जी आपने।
0: सेहतिया जी, आपने पोषक तत्वों की बात की, आजकल एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, एनीमिया, यानी खून की कमी। आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है सेहतिया सिंह जी?
1: यो बड़ी गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी चिंता की बात यो है कि कई महिलाओं को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनके खून की खून में कमी है। कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझ गए वो नजरअंदाज कर देती है। और इसके बाद आगे बात करें तो जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इसका पूरा असर शरीर पर ही पड़े है।
0: इसीलिए उन्हें हमेशा थकान रहती है।
1: बिल्कुल, जैसा जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य से लक्षण है। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिला को हो तो जोखिम और भी बढ़ जावे है।
0: अच्छा, यानी किस तरह के जोखिम की बात कर रहे हैं आप?
1: समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सके है, और प्रसव के समय अगर ज्यादा रक्तस्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सके है।
0: अरे, हम तो हमेशा से यही सोचते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोरी महसूस करना होता है। टीकन देवी, आप क्या कहेंगी?
2: बस यही तो है जिस गलत फहमी में सब पड़े हैं। असल में जो एनीमिया होता है ना, वो सिर्फ कमजोरी नहीं होती, बल्कि मैं तो ये कहूँ थी कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा गंभीर खतरा बन सकता है इससे। और एक बात और बताऊँ आपको
0: जी,
2: जो माँ एनीमिक होती है ना, तो बच्चे में भी आयरन की कमी हो जाती है। और आपको बता दूँ, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है और जो मानसिक विकास में रुकावट होती है, ऐसी कुछ समस्याएं बच्चे को हो सकती हैं।
0: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बल्कि बच्चा भी चुकाता है।
2: बिल्कुल सही समझा आपने। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि आज इबी सही जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से, मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि आप जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो होने वाली हैं, उनको आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए।
0: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए, क्या तैयारी उससे पहले भी जरूरी है?
1: बिल्कुल करनी चाहिए जी, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है, उसे आयरन की कमी ना है, तो भविष्य में गर्भावस्था भी अधिक सुरक्षित रहती है।
2: मैं ये कह रही हूँ सेहतिया जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि एक स्वस्थ माँ बनने की जो शुरुआत होती है ना, वो एक स्वस्थ बेटी से ही हो जाती है। क्यों, आपका क्या कहना है?
1: टीकन देवी जी, आपने बिल्कुल ठीक कह दिया।
0: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध होता है सेहतिया जी?
1: बिल्कुल, बच्चे के दिमाग का विकास गर्भावस्था के दौरान ही तो शुरू हुआ है। उस समय आयरन, फोलिक एसिड, आयोडीन और DHA जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावे हैं। ये पोषक तत्व आगे चल के बच्चों को सीखने में, समझने में, याद रखने में और नई चीजें सीखने की क्षमता की मजबूत नींव रखे हैं।
0: क्या बात है सेहतिया जी, और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले 1000 दिन। आखिर इसका क्या मतलब होता है टीकन देवी?
2: देखो जी, जो पहले के 1000 दिन होते हैं, यानी के गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल तक के होने का जो समय होता है, उसके हिसाब से विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट दौर सुनना चाहो, इम्पोर्टेंट दौर इसको मानते हैं।
0: अच्छा।
2: और इसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क का शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे स्पीड से विकास हो रहा होता है। और आपको बताऊं एक बात और,
0: जी जी,
2: इस पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले तो बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाया करती है।
1: अच्छा, मैं तो नू कहूँ टीकन जी, अब श्रोताओं को यो भी बताओ कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज क्या हुआ है?
2: हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल जरूर बताऊंगी मैं। देखो, बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर ही पहले तो स्तनपान शुरू कराना है। फिर बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, वो गलती नहीं करनी, वो गलती सबसे बड़ी गलती होती है। पूछो क्यों? माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जिसमें होता है कोलेस्ट्रम, ठीक, जिसे हम पीला दूध भी कहते हैं, जो कि बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है और ये कई संक्रमणों से बचाने के लिए हेल्पफुल यानी मददगार साबित होता है। देखा, मैंने इंग्लिश भी सीख ली। इसके बाद ही आपको बताऊं,
0: बताओ बताओ,
2: इसके बाद 6 महीने जो होते हैं तब तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए पहली बात।
1: अच्छा।
2: और दूसरी बात ये, इस दौरान बच्चे को ना तो पानी देना है, ना शहद, ना घुट्टी और ना ही दूसरा कोई भोजन देना, इसकी जरूरत ही नहीं होती।
0: अच्छा, तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तब क्या करना चाहिए ताऊ सेहतिया सिंह, आप बताओ।
1: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू कर दो। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल है, खिचड़ी है, हरी सब्जियां हैं, फल है, अंडा है और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: क्या बात है, यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत ही नहीं है। अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है। टीकन देवी जी, आप क्या बताएंगी?
2: बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो, कई बार ऐसा लगता है हम सभी को कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खर्चा है ना, वो नहीं, ये सच्ची नहीं है बात। असल में हमारे घरों में और जो हमारे आसपास मिलने वाली जो दाल होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, या बात करें मौसमी फल की, चने की, मूंगफली, दूध, दही, और मैं बताऊं जो लोग अंडा खाते हैं, अंडा वो खा सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें बड़ी ही पौष्टिक होती हैं। और एक जरूरी बात और, इससे भोजन संतुलित इस टाइम में होना चाहिए और समय पर दिया जाना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने बात बताई टीकन देवी जी। सेहतिया जी, आप एक बात बताइए, आज की पूरी चर्चा से एक बात तो साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो।
1: बिल्कुल जी, अक्सर हम बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से ही होवे। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी ना है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि अगर एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे होते हैं। क्यों टीकन देवी जी?
2: बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगी तुम्हारी। वैसे एक बात बताऊं, हमारे जो परिवार हैं उनमें अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती होंगी, आपने अपने घर में भी देखी होगी ये बात,
0: देखा तो है,
2: है ना, या अपनी जरूरतों को सबसे एंड में रखती हैं, सबसे लास्ट में, पता नहीं कि मुझे तो ये बात समझ में आती नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अब टाइम है, अब हमें सबको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। देखो, अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने बच्चे को, परिवार को और समाज को बेहतर देखभाल कर पाएगी।
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, अक्सर ऐसा होता है कि घर की महिलाएं बाद में खाना खाती हैं, कई बार तो खाना खत्म हो जाता है और उनको मिलता भी नहीं, और फिर अब दोबारा कौन बनाएगा, इस चक्कर में वो बनाती भी नहीं है, और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। आज से ऐसा जरूर होना चाहिए कि पति, सास, ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है। क्यों ताऊ सेहतिया जी?
1: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना चाहिए, आयरन, फ्लोरिक एसिड की गोलियां समय पर लेनी चाहिए, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करे है।
0: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
1: सही कह दिया जी आपने, यो सभी जानकारी सही व्यवहार के साथ आती है तभी अच्छे परिणाम देखने को मिल सके।
0: श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों का अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन, फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे

0: महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म से जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना, उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक होता है। क्यों टीकन देवी जी?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो मेरी बहनें और जो परिवार हमें सुन रहे हैं ना
0: जी,
1: वो अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज ना करें और साथ ही साथ टाइम पे स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी रेगुलर यानी देखा मेरी अंग्रेजी बड़ी अच्छी हो गई है, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां खाएं और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं ना उनकी सलाह के अनुसार गोलियां लें और घर में मौजूद पौष्टिक भोजन को ही अपनी दिनचर्या का हिस्सा हमें बनाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: मैं तो नू कहूं था, अब जिन तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, अगर आपके मन में अब भी पोषण को लेकर, गर्भावस्था को लेकर या बच्चे की देखभाल को लेकर कोई भी सवाल रह गया हो तो एक काम करो, मेरी अच्छी सलाह, अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता के पास जाओ, ANM हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या स्वास्थ्य केंद्र हो, वहां पर जरूर संपर्क करो। सही जानकारी सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत हुआ है, तो वहां जाकर जानकारी लो।
0: तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषणदाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा। इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं स्मार्ट NGO के तत्वाधान में, सेहत सही लाभ गई। क्यों सेहत या जी?
2: बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैं तो नू कहूंगा धन्यवाद। सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का खास ध्यान रखो भाई।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी यही कहूंगी। सबसे पहले तो धन्यवाद और साथ ही साथ स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। और इसी के साथ आज का जो हमारा कार्यक्रम है खत्म होता है और जाने से पहले हम लेंगे एक शपथ। क्यों?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और हम अपने और अपने परिवारों की जिम्मेदारी भी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन हो वह है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, वहीं नियमित जांच और टीकाकरण कराएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, साथ ही साथ संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि हमारे शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहें और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी मैं कहूं कि भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: जी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम सुना सेहत सही लाभ कई। सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर यह खास प्रस्तुति है स्मार्ट NGO के साथ मिलकर जन जागरूकता में। आप भी अपना सहयोग दीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, आशा दीदी, आंगनवाड़ी, आप यहां पर भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।

0: भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा देती है?
2: बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपये महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
1: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: गर्भावस्था में खून की कमी, पहचान, जांच, पोषण, IFA, MMS और समय पर इलाज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये खास कार्यक्रम अब आप सुनेंगे स्मार्ट NGO के तत्वाधान में, सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम में जन जागरूकता की बात होती है और जैसा कि आपने पिछले कार्यक्रम में भी सुना, आज हम आगे की कड़ी के बारे में बात करते हैं। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मुझे तो आप जानते ही हैं दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है लेकिन कई बार समय रहते पहचानी नहीं जा पाती। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिला को कमजोरी, थकान, चक्कर आना सामान्य सी बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा हो सकता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ तो इसे कैसे पहचाने, कब जांच करानी चाहिए और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हैं हमारे हमेशा की तरह साथी सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी।
1: राम राम जी सबको। और बात एनीमिया की हुई है तो देखो जी, सरल भाषा में कहवे तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे एनीमिया कहा जावे।
0: और गर्भवती महिलाओं में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है इसको?
1: देखो, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ बच्चे की जरूरत भी पूरी करनी पड़ती है। ऐसे समय में आयरन और फोलिक एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर ये जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सके है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिला पर पड़ता है?
1: ना, बिल्कुल ना, इसका असर गर्भवती महिला और बच्चे दोनों पर पड़ सके है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और माँ के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ जावे हैं। इसलिए जितनी जल्दी पहचान होगी उतना बेहतर परिणाम और माँ और बच्चे दोनों के लिए बढ़िया रहेगा।
0: यानी गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सीधे सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहवे हैं कि हमें केवल बीमारी का इलाज ना करना बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र को भी तोड़ना है।
0: दुष्चक्र
1: समझा दे मैं यो भी।
0: हाँ जी।
1: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और उसे खून की कमी है, अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है उसे खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सके है। बाद में यदि बच्चे को भी पर्याप्त पोषण ना मिले तो वो भी कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सके है। इस तरह कुपोषण और एनीमिया का एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा जावे। इसलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बड़ा जरूरी है जी।
0: दोस्तों ये बात सचमुच सोचने वाली है, यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।
1: अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलती है, दिल की धड़कन तेज होती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगा है तो केवल थकान ना हो सकती जी, वो यो आयरन की कमी के लक्षण भी हो सके।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भावस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्यों टीकन देवी जी, आपको क्या कहना है?
2: यही तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं लोग। हमारे गांव में भी ऐसा हुआ था।
0: अच्छा,
2: यो रीना की कहानी मैं सुनाऊंगी अभी, तो मैं
0: सुनाओ जी सुनाओ।
2: देखो, वो दूसरी बार गर्भवती हुई।
0: अच्छा।
2: और उसे लगातार कमजोरी रहने लगी।
0: अच्छा।
2: और घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो ऐसा होता ही रहता है। लेकिन एक दिन आशा बहन आई और उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर चली गई और जब उसकी वहां पे खून की जांच करवाई तो पता चला कि उसे एनीमिया था। बता, और अगर जांच ना होती मैंनू कहूं तो यू बात पता ही ना चलती।
0: तो फिर क्या रीना ने इलाज शुरू करवा दिया था?
2: हाँ, उसने इलाज शुरू करवाया और सबसे बढ़िया बात उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह भी मानी, नियमित जांच करवाई अपनी और अपने खाने पीने पे भी ध्यान दिया और कुछ टाइम बाद उसकी स्थिति में सुधार आ गया। और यही वजह कि समय पर पहचान बड़ी जरूरी हो गए।
0: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और इलाज तब संभव हुआ जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है।
0: तो अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिला को जांच कब करानी चाहिए सेहतिया सिंह जी?
1: देखो जी, गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए सबसे पहले तो, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच भी करवानी चाहिए, ये काम करने चाहिए।
0: ANC यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच को कहते हैं क्या?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, इसे ही कहें। और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच बहुत जरूरी है।
0: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
1: कई बातें देखी जाती हैं, लेकिन खून की जांच इनमें सबसे ज्यादा जरूरी हो गए, इससे पता चले कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या ना है।
0: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
1: ना, ऐसा तो ना है। खून की कमी अलग अलग स्तर की हो सके है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच है तो उसे हल्का एनीमिया कहवे, 7 से 9.9 ग्राम के बीच है तो मध्यम एनीमिया कहवे ऐसे, और इसके बाद 7 ग्राम से कम है तो यो है जी गंभीर एनीमिया।
0: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
1: बिल्कुल, और बढ़िया कह दिया जी आपने।
0: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, सेहतिया सिंह जी बताइए आखिर ये हैं क्या?
1: बता मैं जी, इसे भी बता देंगे
0: जी।
1: IFA यानी आयरन और फोलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं जो गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बड़े इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण हुआ है। अंग्रेजी बोल लूं मैं थोड़ी थोड़ी।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेहतिया जी, आज मुझे भी पता चला MMS मतलब सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह होता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, यो ही होवे।
0: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त होती हैं?
1: ना, ऐसा भी ना है। पूरक गोलियां महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके साथ साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है जी।
0: टीकन जी आप क्या कहेंगे?
2: देखो सेहतिया जी ने बड़ा सही कहा, केवल गोली खाने से बात पूरी ना होने की है। घर का भोजन और पूरक आहार दोनों ही बड़े जरूरी हैं।
0: किस तरह का भोजन ये बताओ।
2: अच्छा मैं बता दूं इस बात को भी, जो घर में उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर आपको ध्यान देना। जैसे कि प्रोटीन युक्त भोजन बड़ा जरूरी है।
0: अच्छा।
2: जिसमें आप ले सकें दाल, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या जो भी उपलब्ध आपको हो रहा है आपकी स्थान के हिसाब से। ठीक, तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो शरीर को देते हैं ताकत, ये बड़े जरूरी होते हैं।
0: यानी मतलब ये नहीं है कि थाली भर के खाना है, बहुत सारा भोजन है, मात्रा से कोई मैटर नहीं, कोई मामला नहीं, गुणवत्ता बहुत ज्यादा जरूरी है।
2: बिल्कुल, गुणवत्ता सबसे एक नंबर पे होनी चाहिए। गर्भवती महिला की बात करें तो उसे पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाना ही देना चाहिए। परिवार को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि पहले, सबसे पहले भोजन मिलना चाहिए।
0: जी ये बात तो वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम आजकल लोग बहुत सुन रहे हैं, IVFCM, आखिर ये है क्या?
1: देखो सबसे पहले तो यो बात समझनी जरूरी है जी कि यो IVFCM हर गर्भवती महिला के लिए नहीं होता जी। हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सके है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया जो है वो पाया गया है। ठीक।
0: अच्छा।
1: है, और डॉक्टर को लगे कि तेजी से इनमें सुधार की जरूरत है तब वहाँ पर ही समझ में आवे।
0: सेहतिया जी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डिमांड बढ़ने वाली है, आप ना गर्भवती महिलाओं की सेहत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं, तो आपको अक्सर गांव-गांव में बुलाया जाने लगेगा। ये बताइए, पहले जांच या डॉक्टर की सलाह, पहले क्या करना चाहिए?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, सरल भाषा में कहवे तो यो आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है।
0: अच्छा।
1: नस के रास्ते ड्रिप लगा के। ठीक है, इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जावे है जहां जांच में आयरन की कमी से होने वाले मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया गया हो, समझ रहे हो जी?
0: जी।
1: और डॉक्टर तेज तथा निगरानी में इसका जिला इलाज जो है वो घना जरूरी समझें।
0: तो लोग अपने मन से इसकी मांग नहीं कर सकते?
1: ना जी ना, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच के आधार पर ही होवे है, क्यों टिकन जी?
2: बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कह दी कि डॉक्टर की जांच के आधार पर ही होगा जो भी इलाज होगा। और एक बात और याद रखने वाली है
0: जी,
2: इलाज का सही रास्ता है जांच, दूसरा डॉक्टर की सलाह, तीसरा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात तो साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर नहीं टालना है। क्यों टीकन जी?
2: बिल्कुल नहीं टालना। अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसकी जांच आपको करानी है समय पे, और उसे देना है पौष्टिक भोजन, पूरक आहार और IFA के साथ MMS जैसी पूरक गोलियां उसे देनी है रोज के रोज, उसकी मदद करनी है और स्वास्थ्य केंद्र से भी जुड़े रहना है।
1: हाँ जी, बिल्कुल सही कह दिया टिक्कन ने। और याद रखियो, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना बहुत बढ़ जावे जी।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने हमको दी। दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए, क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वो नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वो IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषण, पूरक आहार और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर एनीमिया IVFCM की भूमिका पर। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। ये खास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, इसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट NGO। जय हिंद, वंदे मातरम।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: And here we go, आरजे वंशी in the studio. Hey, hello, नमस्ते, आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपके आरजे वंशी और लेकर हाजिर हूँ आपके वाला प्रोग्राम, नाम है जिसका सेहत सखी और संसार। 9:12 एक अगस्त आज की तारीख और गुड वाली मॉर्निंग, गुड वाली वाइब एंड वीकेंड वाइब टू, है ना। सैटरडे है आज और बहुत सारे लोगों को ना इस दिन का बड़े ही बेसब्री से जो है इंतज़ार रहता है क्योंकि कल है संडे और इसी के साथ बहुत सारे लोगों की है छुट्टी, लेकिन हम तो आपसे एज यूजुअल मिलने ही वाले हैं। फिलहाल चलिए आपको आज का फॉर्मूला ऑफ द डे बता देती हूँ, जो कुछ यूँ कहता है, सुनिएगा जरा। कठिन

कठिनाइयाँ भी आती हैं, तो वो केवल रुकावटें नहीं होती हैं बल्कि हमारी क्षमताओं को निखारने का एक अवसर भी होती है। जिस तरीके से सोने को कुंदन बनने के लिए अत्यधिक तप से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सफल और मजबूत बनने के लिए संघर्ष की भट्टी में तपना ही पड़ता है। तो कठिन परिस्थितियाँ जो होती हैं, हमारे भीतर के आलस्य को समाप्त करके हमारी छिपी हुई ऊर्जा और प्रतिभा को बाहर निकालकर हमारे सामने लाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इन कठिनाइयों से ना डरें और फोकस्ड रहें, ओके। और आसान रास्ते जैसे शॉर्टकट, या अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा रास्ता जिसमें कम मेहनत का ऑप्शन आपको मिले, वो देखने में भले ही आपको अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन ये अक्सर वहीं लेकर जाते हैं जहां हर कोई जा रहा होता है। तो भेड़ चाल नहीं चलनी है और इन रास्तों पर कोई विशेष चुनौती नहीं होती, इसलिए यहाँ सीखने और आगे बढ़ने के अवसर भी बहुत लिमिटेड होते हैं। इसी तरीके से आसान रास्तों पर चलने से तुरंत राहत तो आपको मिल सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो लंबे समय तक टिकाऊ सफलता या आत्मसंतोष कतई नहीं देते। और साथ ही साथ आगे आपसे कहूंगी बहुत सारी बातें और बताऊंगी कि आज का दिन क्यों है खास, लेकिन फिलहाल दोस्तों, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अगस्त का महीना, क्योंकि अगस्त में आज हम एंटर हो चुके हैं और कुछ दिनों बाद कांवड़ जो मेला है वो बिल्कुल पीक पर होगा, और रूट डाइवर्जन्स तो अभी से आपको देखने को मिल ही रहे होंगे। बाकी ज़रूरी पड़े या बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगे तभी आप अपने घर से बाहर निकले, नहीं तो जाम में कहीं अटक जाएंगे। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं और इसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार. 9:28, 1 अगस्त आज की तारीख और हरे कांच की चूड़ियाँ, बहुत ही प्यारा सा गाना. और ये गाने की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब तीज आने वाली होती है ना, क्योंकि अगस्त शुरू हो गया है और फेस्टिविटीज़ का जो ये मौसम है वो भी शुरू हो चुका है और तीज भी आने ही वाली है ना. 15 अगस्त को तीज भी हम सेलिब्रेट करेंगी महिलाएं, और हरे कांच की जो चूड़ियां हैं उस दिन बड़े ही महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसी के साथ दोस्तों आपको चलिए आज की हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ कि आखिर आज का दिन क्यों हो जाता है खास, आज की तारीख क्यों हो जाती है खास. तो बता दूँ आपको कि 1 अगस्त इसलिए है खास क्योंकि साल 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी इसी दिन से, और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी असहयोग आंदोलन यानी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की आधिकारिक शुरुआत की गई थी. और इसी दिन स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का निधन भी हो गया था, जो कि एक बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ी हानि थी हमारे पूरे देश के लिए. वहीं आपको बता दूं कि 1955 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने क्या किया था, भारत के इस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी मुंबई में. वहीं

9639012111 पर इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे या किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो भी आप ज़रूर कर सकते हैं। अब क्योंकि चूड़ियों की बातें हो ही रही हैं, चलिए एक और गाना लेकर आई हूँ जिसमें चूड़ियाँ ही कुछ आपसे कहना चाहती हैं। चलिए इस गाने को इंजॉय

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
4: क्या कर रही हो मतलब, रात का बासी पानी फेंक कर ताजा पानी भर रही हूँ।
3: रात का बासी पानी?
4: जी, अब पीने के लिए तो ताजा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
3: तुम्हें पता भी है, देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता, वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
4: तो फिर कैसे किया जाए?
3: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
5: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
0: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। वेल दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूँ और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। ढेर सारी बातें आपसे करती हूँ, संसार के बारे में कुछ बातें आपको बता रही हूँ और कुछ इतिहास आज का क्या कहता है इसके बारे में बातें चल रही हैं। और दोस्तों, अभी ना हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि 1 अगस्त 1920 को हुआ क्या था। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है और जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा का नारा दिया था, उनका इसी दिन निधन हो गया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। और ये सच में पूरे देश के लिए बहुत बड़ी हानि थी और जिस किसी को भी पता चल रहा था बस वो शोक में डूबा चला जा रहा था। लेकिन आपको बता दूं कि ये उन महानायकों में से एक रहे जिन्होंने देश की आज़ादी की नींव को वैचारिक और जन आंदोलन के स्तर पर सबसे मजबूत किया था। और 1 अगस्त 1920 को क्योंकि इन्होंने हमें अलविदा कह दिया था, जो भारतीय इतिहास के सबसे शोकपूर्ण और परिवर्तनकारी दिनों में से एक माना जाता है। उनके जीवन और उनके द्वारा किए गए योगदान क्या रहे, चलिए इसके बारे में मैं कुछ आपसे थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी ज़िले में और चिखल गाँव में इनका चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उनके पिता गंगाधर राव तिलक एक टीचर रहे और संस्कृत के विद्वान भी थे। उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज से गणित और संस्कृत में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद LLB की पढ़ाई पूरी की थी। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी या निजी लाभ के मार्ग को नहीं चुना, बजाय इसके उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और शिक्षा के प्रसार को समर्पित करने का संकल्प ले डाला। और आपको बताऊं कि इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ये बात है साल 1916 की, जब होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था उसके दौरान तिलक जी ने ये एक हिस्टोरिकल स्लोगन दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इस नारे ने सोए हुए भारतीय जनमानस में एक नई ऊर्जा फूंक दी थी और उस समय नरम दल के नेता अंग्रेजों के सामने सुधारकों की भीख मांगते थे और वहीं तिलक जी ने स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं है जनाब, बल्कि भारतीयों का मौलिक अधिकार है जिसे छीन कर लिया जा सकता है। तो दोस्तों, छीन कर लिया भी। फिलहाल और बातें आपसे करूंगी, फिदा मूवी का ये गाना इज वेटिंग फॉर यू, इंजॉय करेंगे गाना, उसके बाद आई

ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh

0: Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: और दोस्तों, ये गाना है नाम मूवी से। इस गाने की फरमाइश आई है जानी गांव से। हकीम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो भी साथी आपके साथ बैठे हुए हैं या हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार। यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। ये गाना आपकी फरमाइश पर।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें तो आपसे हो ही रही हैं, और इसी के साथ 10:14 और 1 अगस्त आज की तारीख, और अमीरों की शाम, गरीबों के दाम, जो भी था whatever, मतलब ठीक था ये गाना, काफ़ी दर्द भरा नाम मूवी का ये गाना। और सच में जिसका मन सुबह सुबह प्रफुल्लित भी होगा, वो थोड़ा सा दुविधा में बैठ गया होगा इस गाने को सुनने के बाद। बाकी बशर्ते यही कहूँगी कि बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हमारी यूनियो म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, हमारी बॉलीवुड के पास हैं। आप अच्छे गानों की फरमाइश भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा नंबर है 9639012111। और जैसा आपका मूड है वैसे भी आप गाने ज़रूर हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग कि आपने ऐसा गाना क्यों फरमाया या फरमाइश की। देखिए, गाने सभी अच्छे होते हैं, बस वो हमारा मूड अच्छा और ख़राब होता है जिसमें कि हम ये जज कर बैठते हैं कि गाना कैसा है। बाकी बहुत अच्छे अच्छे गाने से आपके लिए लेकर आई हूँ। फिलहाल हम बात कर रहे थे आज के इतिहास के बारे में, आज की तारीख के बारे में, और मैंने क्योंकि आपको बताया था कि आज ना हमें एक नुकसान हुआ था, भारी नुकसान मैं इसको कहूँगी, क्योंकि आज ही के दिन साल 1920 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया था, और उनके बारे में भी हम कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने कुछ लोक प्रसिद्ध नारे दिए थे जो आज तलक भी अगर आप सुनते हैं तो आपको एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। वहीं आपको बताऊं कि इन्होंने ना ब्रिटिश इतिहासकार वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन एनवेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहकर भी एड्रेस किया है, जो कि एक बड़ी बात हो जाती है अपने आप में ही कि इतना बोलबाला इनका रहा कि इनके नाम का जिक्र अंग्रेज़ी शासन की किताबों में भी जाकर रहा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो उपाधि है अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें बदनाम करने के लिए बेशक दी गई थी, लेकिन भारतीयों ने ये उनके उस निडर और विद्रोही स्वभाव का प्रतीक मानी, और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। वहीं ये बहुत बढ़िया पत्रकार भी रहे, इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे काम किए जो सामाजिक सुधार से रिलेटेड हैं। आपको बताऊं, केसरी और मराठा करके इनकी कुछ पत्र थे जो जनता को जागरूक करने के लिए शुरू किए गए थे, और जिसमें कि ब्रिटिश नीतियों की पोल खोलने के कुछ तरीके या उसमें खोल दी जाती थी पोल, ऐसा कुछ समाचार पत्र इनके ये रहे। केसरी जो कि मराठी भाषा में थे, और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में पब्लिश होता था। उनके लेख इतने ज़्यादा प्रभावशाली होते थे कि पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रोश की लहर इनको पढ़ के दौड़ जाती थी। वहीं जनता को एकजुट करने और राजनीतिक चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने एक सार्वजनिक गणेश उत्सव भी ऑर्गेनाइज कराया, जो कि 1893 की बात है, और शिवजी उत्सव की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी, जिसमें कि 1895 की ये शुरुआत बताई जाती है। मतलब किस तरीके से आप उत्सवों को एक राजनीतिक चर्चाओं में तब्दील करने का मंच बना सकते हैं, या वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नीतियाँ बना सकते हैं, ये भी स्ट्रेटजी हमारे जो रहे इन्होंने बखूबी निभाई। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: Are you looking?

या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. तो दोस्तों ढेर सारी बातें लेकर हाजिर हूँ. 10:38 हो गई हैं. 1 अगस्त आज की तारीख है और आज का दिन और भी ज़्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज है हमारे बॉलीवुड सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन. आप समझ सकते हैं कि किसी का नाम ट्रेजेडी क्वीन भी हो सकता है, लेकिन हाँ इस नाम से उस अभिनेत्री को जाना जाता है और बहुत सारे लोगों को तो पता भी चल गया होगा कि आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ. असल में आज ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी का जन्मदिन है और इनका जो जन्म है वो 1 अगस्त 1932 को हुआ था बॉम्बे में. और अब मैं उनके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको बता देती हूँ. असल में उनका असली नाम मीना कुमारी नहीं था, ठीक. उनका जो वास्तविक नाम था वो था महाजनी बानो और उनका जन्म एक कला प्रेमी परिवार में हुआ था. उनके पिता अली बख्श एक थिएटर कलाकार और संगीतकार थे, साथ ही साथ माता इकबाल बेगम वो थी नृत्यांगना. इसी के साथ आपको बता दूं कि मीना कुमारी ने ना बचपन में ही अभिनय की शुरुआत कर दी थी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसके कारण मीना कुमारी को बहुत कम उम्र में, मैं कम उम्र का यहाँ पर रिवील करना चाहूँगी, महज 4 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था या कहें कि उनको काम करना पड़ा. उन्हें बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू करना पड़ा जिससे उनका बचपन सामान्य बच्चों की तरह नहीं बीता. उन्हें बचपन में बेबी मीना के नाम से जाना गया. वहीं इनका जो सफ़र है वो काफ़ी रोमांच भरा रहा. अगर साल 1952 की बात करें तो उसमें निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा मीना कुमारी के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित मानी जाती है और इस फिल्म की ज़बरदस्त सफलता रातों रात उन्हें स्टार बना गई. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दोस्तों पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहिए. इसी के साथ फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए दर्द, त्याग, आंसुओं और संजीदगी से भरे किरदारों ने दर्शकों के दिलों पर ऐसा गहरा असर छोड़ा कि उन्हें हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाने लगा. उनके शानदार अभिनय से सजी हुई कुछ अगर मेन फिल्म्स की बात करें तो वो है साहिब बीवी के गुल और गुलाम, पाकीज़ा, परिणीता, दिल अपना और प्रीत पराई, शारदा, आरती और साथ ही साथ कोहिनूर. और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूँगी सारी की सारी. बट अभी हम इंजॉय करेंगे बहुत ही प्यारा सा गाना मिस्टर इंडिया मूवी का, कहीं मत जाइएगा.

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं और इसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। और मेरी सखियों से यही बात मैं कहना चाहूँगी, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, क्या तैयारी शैयारी आपने शुरू कर रखी है? शॉपिंग आप गए अभी तक या नहीं? पति देव के खर्चे कराएं या नहीं, ये भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। देखो, क्योंकि महंगाई तो हो ही रखी है, लेकिन ऐसे में फेस्टिवल्स को मनाना या उसमें कॉम्प्रोमाइज़

ऐसे में ना आप बाहर जाने से बचें। दूसरा, ये ना मौसम थोड़ा बेईमान चल रहा है, मतलब कि आपने ज़रा सी लापरवाही की और आपकी तबीयत हो जाएगी ख़राब। तो इस वाले मौसम से अपना जो है बचाव करके चलना है, क्योंकि बहुत जल्दी से नज़ला या जुकाम आप पकड़ बैठेंगे और फिर सच बताऊँ ना, वो कंडीशन बड़ी ही बेकार लगती है। जब गर्मी में जुकाम होता है ना, तो वो बहुत ही वाहियात सा लगता है और बस बस बस क्या कहें मियाँ, बस मूड ही ख़राब हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि अपने घर में अगर आपके बच्चे हैं छोटे, उनका भी ध्यान रखें, और एसी अगर चलाते हैं तो एसी ज़्यादा ना चलाएं और

और इवन कुछ देर के लिए ही चलाएं, ज़्यादा देर के लिए ना चलाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को इससे परेशानी हो सकती है, तकलीफ़ हो सकती है और उन्हें भी फिर ज़ुकाम या खांसी या बुखार हो सकता है। तो इन दिनों ये चल भी रहा है, पीक पे है, बड़े बड़े लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को इस मौसम में बुखार हो रखा है। तो बच्चों को बड़ा बचा कर रखने की ज़रूरत है, और नहलाते वक्त भी ये ध्यान रखें कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और बहुत ज़्यादा देर तक बच्चा पानी में ना हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक छींक से ही शुरुआत होती है और फिर वायरल बढ़ते चला जाता है और बच्चे को अपनी चपेट में ले लेता है। बड़े भी बड़ों की चपेट, बड़ों का जो संक्रमण है वो बच्चों तक ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आपके घर में किसी बड़े को भी हो रखा है वायरल, तो आप थोड़ी सी दूरी बना करके रखें, मास्क का उपयोग करें, और जब भी बाहर से आ रहे हैं या बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को ज़रूर अच्छे से वॉश कर लें। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, तो सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो।

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
3: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे करती हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। 11:16 हो गए हैं। 1 अगस्त आज की तारीख है और दोस्तों आज है सैटरडे। वाइब चल रही है और इसी के साथ मैं ना आपसे बातें कर रही हूँ कि आज का दिन क्यों हो जाता है खास। लेकिन बिफोर दैट, खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे साथ ना जुड़ गए हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन टिकेस्ट्रो, रोजी टिकेस्ट्रो, पल टिकेस्ट्रो और साथ ही साथ विलिस टिकेस्ट्रो। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं कुमार हेड़ा सहारनपुर से ही, सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम और साथ ही साथ इनकी पूरी फैमिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप लोग हमसे जुड़े हैं। और आपके लिए बिल्कुल बहुत ही प्यारे से गाने मैं लेकर आई हूँ जो प्ले करने वाली हूँ। लेकिन बिफोर दैट, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं आज के दिन के बारे में, तो वी वर टॉकिंग अबाउट 1932 में आज ही के दिन मीना कुमारी जी का जन्म हुआ था और मुंबई में इनका जन्म हुआ था। इनको ट्रेजिडी क्वीन के नाम से जाना जाता है और ये भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्री रही हैं। इनका वास्तविक नाम महाजनी बानो था और इनकी जो कुछ फिल्में रहीं जो बहुत ही फेमस हुई या फिर इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, इसके बारे में भी हमने बात की। इसमें साहिब बीवी और गुलाम, पाकिजा, परिणीता, दिल अपना और प्रीत पराई, शारदा, आरती और कोहिनूर शामिल हैं। वहीं इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो मीना कुमारी अपने बेहतरीन अभिनय के लिए कई बार पुरस्कृत और सम्मानित की जा चुकी हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कई फिल्म फेयर पुरस्कार मिले और उन्होंने एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी बनाया। चलिए उसके बारे में आपको बताती हूँ। असल में ये बात है 1963 की, जब एक ही वर्ष में उन्हें 11 फिल्म फेयर पुरस्कार जो हैं दिए गए और साथ ही साथ इन्हें साहिब बीवी और गुलाम, आरती और मैं चुप रहूंगी जैसी फिल्मों के लिए नामांकित भी किया गया, नॉमिनेट भी किया गया और जिसमें से उन्हें फिल्म साहिब बीवी और गुलाम के लिए पुरस्कार दिया था, फिल्म फेयर पुरस्कार। और ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अनोखा और पहले इनक्रेडिबल वाला रिकॉर्ड बना। इसी के साथ आपको बता दूं कि ये काफ़ी वर्सटाइल अभिनेत्री रही और इसी के साथ उन्हें ना लिखने का और गाने का बड़ा शौक था। कवित्री भी रही ये, गायिका भी रही और ये सारी चीज़ें वो करती थी। शायरा, बेहतरीन शायरा ये रही, वो नाज उपनाम से उर्दू में शायरी लिखा करती थी और उनकी शायरी में उनके जीवन का दर्द और अकेलापन साफ ही झलकता था। वेल, आपको कौन सी मूवी इनकी पसंद है या कौन सी मूवी में इनका अभिनय आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया था, लेट मी नो इन माई नंबर 9639012111 नंबर हो जाता है मेरा, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना सहारनपुर वालों के लिए।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों 11:30 हो गए हैं, 1 अगस्त आज की तारीख है और शनिवार का दिन है। मैं हूँ आपके साथ, आपकी आर जीवन शिव, प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। एंड आज ना हम बातें कर रहे हैं मीना कुमारी जी के बारे में, जो इनका जन्म आज ही के दिन 1932 में हुआ था, मुंबई में इनका जन्म हुआ था और भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में इनका नाम शामिल है। ट्रेजेडी क्वीन के नाम से इनको जाना जाता है और इनकी जो अदाकारी है वो काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव है और जो

0: बैठता था। इसी के साथ आपको बताऊं कि उन्होंने कुछ फिल्मों में अपने गाने भी दिए थे जो काफी पॉपुलर हुए। उनकी लिखी गई गजलों का एक एल्बम है जिसका नाम है आई एम मीना कुमारी, जो काफी पॉपुलर हुआ था, जिसमें संगीत खय्याम ने दिया था। वहीं अगर मीना कुमारी के उस पॉइंट की बात करें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा, तो उनके जीवन का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट रहा वो रहा पाकीज़ा। मतलब पाकीज़ा अपने आप में एक अलग दौर हो जाता है। आप उस मूवी के बारे में पढ़ेंगे या देखेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि क्यों वो इतनी आइकॉनिक मूवी रही है, जिसे बनने में लगभग 14 साल का लंबा समय लगा था। मतलब आप समझ पा रहे हैं, इतने लंबे ड्यूरेशन में अगर कोई मूवी बन रही है तो उसके पीछे की कहानी भी कुछ खास ही रही होगी। और यही बहुत उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा उनके जीवन का। वहीं आपको बताऊं कि व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों, असफल वैवाहिक जीवन, क्योंकि इनका जो विवाह हुआ था वो कमल अमरोही जी के साथ हुआ था, फिर उसके बाद वो उनसे सेपरेट हो गई थी, और उसके बाद उनके स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी जब वो सेपरेट हो गई थी। वहीं आपको बताऊं कि फरवरी 1972 में पाकीज़ा जो है रिलीज़ की गई और वो ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई, और मीना कुमारी के अभिनय की चारों तरफ इसकी तारीफ हुई। और इस फिल्म की रिलीज़ के कुछ ही हफ्तों बाद 31 मार्च 1972 की बात करें, जब वो सिर्फ 39 ईयर्स की थी, इतनी कम आयु में ही उनका निधन हो चला था। आप समझिए कि 4 की आयु से उन्होंने काम करना शुरू किया और करीब 4 तक उन्होंने काम किया, और उसके बाद वो हमें सबको अलविदा कहकर चल दी। फिलहाल चलिए, उनका काम हमेशा याद रहेगा और हम उनके काम को हमेशा याद करते रहेंगे, ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहेंगे। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना कटिंग पतंग मूवी का, आप यूं ही एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: अपनी आंखों से ना देखता तो कभी यकीन ना होता, यही कि आपको हंसना खेलना भी आता।
2: सपने जिद की, इसलिए खेलना पड़ा कुछ देर के लिए सब कुछ भूल के इस पागलपन में।
1: पागलपन? खुशी तो मन की तरंग होती है, उसे कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता।
2: कमल बाबू, कविता से मन को बहलाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जिस मन को दुर्भाग्य ने और समाज के बंधनों ने
1: कश्ती लुटा दी
2: और रात के अंधेरे में खो जाती है,

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: हाँ, एक बार मैं फिर आपके बीच जुड़ना चाहूंगा, सुनील कुमार शर्मा, चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर। आपको एक बात कहना चाहूंगा, हृदय से बात कहना चाहूंगा कि राष्ट्र को सुरक्षा के लिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए, अपने घर की, अपने शहर की सुरक्षा के लिए जब भी यातायात नियमों का पालन करें और स्वयं को सुरक्षित रखें। अगर हम सुरक्षित हैं तो राष्ट्र सुरक्षित है। आने वाले कल को स्वर्णिम बनाने के लिए हमेशा अपने जीवन का ध्यान रखें, जीवन अनमोल है। सुनते रहिएगा आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और फिलहाल मैं अपनी सखियों से बात जरूर करूंगी, क्योंकि टाइम जो है वो लगभग 11:50 हो गया है। 1 अगस्त आज की तारीख है और शनिवार का आज दिन है, और आज हम ढेर सारी बातें तो कर ही रहे हैं। इसी के साथ चलिए आपको लेकर चलती हूँ आपके रसोई घर में, जहाँ पर आप किस तरीके से अपनी रसोई की साफ सफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखो, ओवन के अंदर जो चिकनाई जम जाती है या वो कालापन कालिख जो जम जाती है, उसको किस तरीके से साफ करना है, बहुत सारी महिलाओं के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। वो सोचती रहती हैं कि इसको कैसे साफ किया जाए, और बहुत सारी महिलाओं को तो ये डर रहता है कि कहीं उन्हें बिजली का झटका ना लग जाए। देखो, सबसे पहले तो जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की सफाई करते हैं, तो आपको उसकी वायर को अनप्लग करना है और उसका स्विच भी ऑफ करके फिर आपको अनप्लग करना है, ठीक है। दूसरा, फिर भी प्रिकॉशनरी बेसिस पर आप हमेशा चप्पल पहनकर ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सफाई करें। अब आप ओवन के अंदर की सफाई कैसे कर सकते हैं, देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, बेकिंग और रोस्टिंग के कारण, क्योंकि बहुत जल्दी ये गंदा हो जाता है, तो आपको बेकिंग सोडा ही लेना है। इसका रामबाण भी ना बेकिंग सोडा पेस्ट है। इसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, देखो आपको लेनी है एक कटोरी, उसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी मिक्स करना है, और एक डेंस यानी कि गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। इसे ओवन की दीवारों और नीचे की सतह पर अच्छी तरीके से आपको लगाना है, और ध्यान रहे इसको आप हीटिंग कॉइल पर ना लगाएं, ठीक। इसे रात भर के लिए आपको छोड़ देना है, और अगली सुबह एक गीले स्पंज से आप इसको साफ कर लेंगे, पोंछ लेंगे, और इसके बाद सिरके को स्प्रे करके साफ करने से ओवन जो है वो बिल्कुल चमक जाएगा, और जो उसमें स्मेल हो जाती है वो भी छूमंतर हो जाएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जिससे हमारी जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो जाती है और कुकिंग और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। वहीं क्योंकि स्टेनलेस स्टील और पीतल के बर्तन जो होते हैं, उन पर भी कई बार धब्बे लग जाते हैं, चिकनाई की बात करें या बाकी जले हुए के धब्बे लग जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, आप नींबू ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, या राख भी ले सकते हैं नमक के प्लेस पर। इसके लिए आपको क्या करना है, नींबू पर नमक लगाकर आप क्या करें, तांबे या पीतल के बर्तनों को रगड़ें, और उनका जो कालापन है वो मिनटों में दूर हो जाता है, और ऐसे में वो फिर नए जैसे चमकने लगते हैं, शाइनी हो जाते हैं। और अगर स्टील के बर्तन हैं जो आपके ख़राब हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा डल लुकिंग हो चुके हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा और गर्म पानी का घोल लेना है, और उससे उसको वॉश कर लेना है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है और बहुत ही किफ़ायती तरीका होता है, मैं ये कहूँगी। तो चलिए, फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, इस गाने को एंजॉय करेंगे। गाना फ्रॉम द मूवी तीसरी मंजिल।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूं और इसी के साथ 12:11 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है सेहत, सखी और संसार। ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं और इसी के साथ वी वर टॉकिंग अबाउट कुछ ऐसे हैक जिनसे ना आपकी किचन वाली जो जिंदगी है और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। बहुत सारी

तरीके से जमी हुई जो चिकनाई होती है उसको साफ कर सकती हैं, या किस तरीके से आप बर्तनों को साफ कर सकती हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो फ्रिज की बदबू होती है, आपने देखा होगा कि आप ना बस सामान रखे चले जाते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, लेकिन कभी उसकी सफाई का ध्यान आपको आता भी है या नहीं, मतलब आता है लेकिन वंस इन अ ब्लू मून आप उसको महीने में एक बार साफ करेंगे। और कई घरों में मैंने देखा है कि महीनों तक भी रेफ्रिजरेटर की जो सफाई है वो नहीं होती है, सिर्फ ये सोच कर कि न जाने इस सफाई में कितना समय लगेगा, और क्योंकि समय का अभाव रहता ही है सभी को, इसलिए लोग इग्नोर कर देते हैं और इस चीज़ को ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जहां पर आप अपनी चीज़ों को इस उम्मीद के साथ स्टोर कर रहे हैं कि आप उसको दोबारा से खा सकें, वो ख़राब ना हो और आप उसको फिर से इस्तेमाल कर सकें, तो जनाब वो तो आपको ज़रूर साफ करना होता है ना, उसकी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है सफाई की, क्योंकि वहाँ पर आप वही चीज़ें रख रहे हैं जो आपको बाद में चाहिए, वो भी खाने से रिलेटेड। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो फ्रिज में जो पुरानी सब्जियाँ होती हैं या पुराना जो खाना होता है उसको साफ़ करें, उसकी महक भी हो जाती है फ्रिज में, तो उसको भी कैसे साफ़ कर सकते हैं इस बारे में बताऊँगी। लेकिन ज़्यादा समय तक फ्रिज में स्टोर करके कुछ भी ना रखें, और कोशिश करें कि आप ज़्यादा पुराना फ्रिज में रखा हुआ खाना खाने से बचें, क्योंकि उससे बीमारियाँ पनपती हैं आपके शरीर में और कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल ही जाते हैं लॉन्ग बेसिस की अगर बात करें। तो अगर आपके फ्रिज में भी एक अजीब सी बदबू हो गई है और इन दिनों ये बदबू ज़्यादा पीक पर होगी, तो आपको क्या करना है, एक छोटी कटोरी में बेकिंग सोडा लेना है, उसको फ्रिज के कोने में आपको रख देना है, ये नेचुरल रूप से सारी बदबू को सोख लेता है। और आप ऐसा हर महीने कर सकते हैं, और हर महीने गुनगुने पानी और

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ क्योंकि प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि मेरी आपसे बातें होती ही रहती हैं और मैं आपकी बातें सुनती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ और मुझसे कहना है, कुछ और मुझसे शेयर करना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर हो जाता है मेरा 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ आप जुड़

करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, और जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी और मुझे भी बताकर ही बहुत खुशी होती है कि मेरठ में ये पहला रेडियो स्टेशन है जिसके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, और अभी तक ये इकलौता ऐसा रेडियो स्टेशन है जो आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहें, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें और अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाते रहें, तो इसी सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये आपके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनवाया है। तो आप इसको इंस्टॉल करें, हमसे जुड़ जाएं और अपनी बात सीधे हम तक पहुंचाएं, हमसे शेयर करें जो भी आप कहना चाहते हैं। किसी गाने की फरमाइश करनी है तो वो कर सकते हैं, किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप अच्छा लिखते हैं या बोलते हैं तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लिखते हैं तो वो जरूर हमें लिख करके भेजिए, हम आपके नाम के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं अपने किसी पीस ऑफ राइटिंग या पीस ऑफ आर्ट को लेकर के। बाकी अभी तो इतना ही कहूंगी कि आप इतना प्यार भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिलहाल आपके प्यार को सलाम करते हुए ये गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। आप यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत, सखी और संसार। और दोस्तों, हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें साझा की हैं। 9 बजे से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और इतनी सारी बातें आपसे करती हूँ। और आपके बीच जब कॉल से मैसेज आते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है कि हाँ, मेरा जो प्रोग्राम है वो सुना जा रहा है और आप तक मेरी बात पहुँच पा रही है। और खुशी इस बात की होती है कि आपकी बातें भी मुझ तक पहुँच हैं, आपकी फरमाइशें भी मुझ तक पहुंचती हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन का हम अनुभव करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपसे कहूंगी कि अभी ना मेरा उचला है आपसे इजाजत लेने का समय, क्योंकि अगले प्रेजेंटर आते ही होंगे, उन्हें भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है ना, तो इसलिए उनके लिए कुर्सी मुझे खाली करनी होगी, जाना होगा स्टूडियो के बाहर, ताकि अगला प्रेजेंटर आए, अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट करे और आपसे ढेर सारी बातें करे, है ना। तो इसी के साथ मैं यही कहूंगी चलते चलते कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, खाना पीना जो है अपना सेहतमंद रखें, ऐसा खाना ना खाएं जिससे कि आपकी हेल्थ पर कुछ गलत प्रभाव पड़े या आपके बच्चे बीमारियों की चपेट में आ जाएं, क्योंकि हम स्वाद के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जिसका बाद में जो परिणाम होता है वो फिर हमसे देखा नहीं जाता। तो इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पानी खूब पिए, और हो सके तो जब भी आपको लगे कि आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो आप हुआ पानी भी ऑप्ट कर सकते हैं या प्योरीफायर का भी आप पानी ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आप हार्ड वाटर पीना प्रेफर करते हैं तो। और साथ ही साथ मैं यही कहूंगी आपसे कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि आपकी छोटी सी सावधानी आपके इस अमूल्य जीवन की रक्षा कर सकती है और दूसरे के जीवन की भी रक्षा कर सकती है। सतर्क होकर चलें और सुरक्षित होकर चलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही मस्त रहिए। फिलहाल जाते जाते छोड़कर जाऊंगी आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मैं आपसे मिलूंगी कल इसी समय और इसी प्लेस पर और बहुत सारी बातों के साथ। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभ आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 शुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद।
4: 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुबह आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।

नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो। गांव में रहकर कैसे हमारे किसान भाई ज्यादा कमाई कर सकते हैं, आज इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ के सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई किस प्रकार गांव में रहते हुए उठा सकते हैं।

0: हैं। सरकारी योजनाओं और बैंक लोन की मदद से हम आधुनिक और लीक से हटकर यानी अलग खेती को बेहद कम पैसों में शुरू कर सकते हैं। सरकार इसके लिए हमें भारी मात्रा में सब्सिडी यानी कि छूट देती है। अलग और नई तकनीक की खेती के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ हम सभी उठा सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी NHM, इसमें पोली हाउस, नेट हाउस, मशरूम यूनिट, स्ट्रॉबेरी, हाई वैल्यू खेती, ये सब करने के लिए 40% से लेकर 50% तक भी आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
1: मन भावन संगीत हमारे दादा रिसाल बजाएंगे, दादा रिसाल बजाएंगे, कोशिंदर वैरिसी पाल।

शिविर में बैठे हुए शाम के वक्त गिरिधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन सेनापति बनेगा हमारी तरफ से मेहरबानों? फिर क्या था करण के लिए कह दिया कि कल के युद्ध में करण को सेनापति बनाया जाएगा।

0: फिर क्या था साथियों, करण आज सेनापति बन गए और करण के अरमान थे कि मैं रणभूमि में लड़ाई लड़ूं और वो भी अर्जुन के सामने। मेहरबानों, करण ने कहा कि अगर कृष्ण जैसा मुझे सारथी मिल गया तो मैं पांडवों के छक्के छुड़ा दूंगा और अवश्य महाभारत के मैदान में दुर्योधन हमारी विजय होगी। मेहरबानों, कैसे भला?
1: समुंदर में किश्तियां डूब जाती हैं, बड़ी मुश्किल से वो उभर पाती हैं। पूछना हो तो पूछो गमे इन साहिलों से, निकली हुई घड़ी बड़ी मुश्किल से हाथ आती है।
0: लेकिन दुर्योधन, काश तेरी तस्वीर भी मेरे पास होती, फिर मैं तेरी यहां तलाश न करता। कर आते न तू

0: डराते न तुम मेरी आवाज पर, सच कहता हूँ कि मैं प्यास में न मरता और आज तेरी चाहत पूरी करूंगा। मैं करण का सारथी बनूंगा, लेकिन याद रखना कि करण अपनी जिद ना करने लगे, जिधर के लिए मैं सब को ले जाऊं, करण कहीं मेरी बेइज्जत ना कर दे। क्यों कि रिश्ते में मैं उसका मामा लगता हूं और मैं भी लड़ाकू जवान हूं, करण तो मुझसे कहीं कम जानता है। मेहरबानों भला कैसे,
1: वास्तु कृष्णा के साथ
2: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

साथियों, दुर्योधन सोच रहा था, न था मंजूर किस्मत को, न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की, नहीं कोई गुलिस्ता में कमी क्या थी नजारों की। हमारे पास तो बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े सारथी हैं, और अब तो करण सेनापति बन गया और मनमानी करण की हो गई, मन चाहे सारथी मिल गई। मामा सल मेरे मेहरबान, ये खबर जब पांडवों में पहुंची तो भगवान कृष्ण चकरा जाते हैं, रहस्य में घूमने लगे। क्यों? करण के पास परशुराम के दिए हुए 5 बाण, वो ऐसी शक्ति थी कि जिनमें 5 पांडवों के प्राण थे। मेहरबानों, बस फिर तो श्री कृष्ण इस तरह से धर्मराज से कहने लगे,

जय हिंद। आपका स्वागत है सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। किसान भाई आज के कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए सरकार किस प्रकार से मदद भेजती है, यानी कि सब्सिडी जो स्कीम होती है, हम उनका लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं। जैसे अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं या मशरूम यूनिट लगाना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं, या फिर आप शिमला मिर्च की या फिर आप ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पॉली हाउस या नेट हाउस की जरूरत पड़ती है। उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो सरकार आपको 40-50% तक की भारी सब्सिडी देती है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, अपना प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, थोड़ी ट्रेनिंग भी आपको लेनी पड़ सकती है। तो ये एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, NHM, आप इसके द्वारा अप्लाई कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। एक होता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी के प्रति बूंद अधिक फसल, इसे हम टपक सिंचाई विधि या फव्वारा या फिर स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी बोलते हैं। और सरकार पिछले कई साल से इसमें किसानों की मदद कर रही है। इसमें क्या होता है कि आपके पूरे खेत में ना छोटी छोटी पाइप बिछा दी जाती हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है। वो क्या होता है कि सिर्फ हर पौधे की जड़ों में थोड़ा थोड़ा सा एक एक बूंद पानी टपकता रहता है, उसमें आपको पूरे खेत में पानी भरने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार छोटे से छोटे किसानों को भी 80% से 90% तक की छूट इस विषय में देती है। कभी अगर आपको लगे कि कुछ अलग हटके मुझे खेती करनी है, ड्रिप इरिगेशन आपने अपने गांव में, ज्यादातर ये हर गांव में देखा ही जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बहुत से किसान भाई तो इससे गन्ना भी बोते हैं, आपने देखा होगा वो ब्लैक कलर का पाइप पूरे खेत में बहुत ज्यादा बिछा होता है, ये वही सिस्टम होता है। सरकार इसमें आपकी मदद करती है। तो आप यहां से अगर इस विधि को अपनाना चाहते हैं, कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, सरकार आपको मदद करने के लिए तैयार है। आप तैयार है क्या, बताएगा जरूर 9639012111 पर।

0: भक्ति और सनातन के रंग, सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग। जय हिंद।
1: भवं भवानी सहितं नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाए लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया, हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: ट्रैफिक अपडेट सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। आप हो कहीं भी अपनी गाड़ी में या फंस गए हैं कहीं ट्रैफिक में, पूरे मेरठ की सड़कों का हालचाल सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। ट्रैफिक स्पेशल में वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

जय हिंद वंदे मातरम। यह मेरठ का नंबर वन सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो और ये कार्यक्रम है जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं के लिए जो हम किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। अगर किसी के पास जमीन थोड़ी है, कम है, तब भी वो गांव में रहते हुए ज्यादा कमाई के साधन कैसे जुटा सकता है या पैदा कर सकता है। तो अगर आपके पास जमीनें कम है, साधन कम है, पैसा नहीं है, सरकार आपको सब्सिडी के माध्यम से मदद पहुंचाने के लिए तैयार, बिल्कुल तैयार बैठी है। अगर आप बागवानी करना चाहते हैं, जैसे सब्जी बोना या मशरूम लगाना, इस तरह की खेती आप करना चाहते हैं, तो पोली हाउस या नेट हाउस आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आपको सब्सिडी देने के लिए तैयार है। आपके पास पूरा प्रोजेक्ट और आपको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, वो होना चाहिए। दूसरा, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया, टपक सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, इसको कई नाम दिए जाते हैं, इसके लिए भी सरकार आपकी मदद करती है। इसका योजना का नाम होता है प्रति बूंद अधिक फसल योजना। उत्तर प्रदेश मशरूम प्रोत्साहन योजना भी है। मेरठ के विकास भवन में स्थित उद्यान विभाग में जाकर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं से आपको मशरूम उगाने की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। कल्टीवेशन रूम किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से आपको प्रोसेस करना है, किस प्रकार से आप इसको बेचेंगे, सब कुछ ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट की बदौलत आप अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के साथ जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको हर प्रकार की सहायता सरकार से जरूर मिलेगी। बस एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों आपको, कि आपका प्रोजेक्ट सॉलिड होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग भी, क्योंकि ना इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। आप लोन लेते हैं, आप कर्जा भी उठाते हैं, वो एक दिन हमें वापस भी चुकाना है। तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, हमारा सच में मन होना चाहिए कि हम सच में कुछ करना चाहते हैं, वरना बेवजह का कर्ज अपने सर पर लेने से कोई लाभ नहीं।

0: भक्ति और सनातन के रंग, सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग। जय हिंद।
1: भवं भवानी सहितं नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाएं, लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया, हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: ಸಲುವಾಗಿ ಧರ್ಮೀಯ ಸುಷ್ಮಾಜಿ ಒಂದಾಗ್ಯಾವಲ್ಲ
1: ಶಕ್ತರಿ

0: ट्रैफिक अपडेट सिर्फ सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। आप हो कहीं भी अपनी गाड़ी में या फंस गए हैं कहीं ट्रैफिक में, पूरे मेरठ की सड़कों का हाल चाल सिर्फ सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। ट्रैफिक स्पेशल में वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: गायक हैं राजेंद्र सिंह खरकिया वैशाखी। कोई बात कहां से, एक जमींदार कहां का अपने हरियाणा का, उसकी आजकल कैसे दुर्गति हो रही है बोला, क्या बताया

एक और बात भाई, कह जमींदारे की खेती लाग जा तो ऐसी लाग जा कह बस जिंदगी बरताएगा सुख हो जा। अरीब जो पिछले 2 साल पहले काल पड़ा था, जय दागा काल पड़ जा तो नु समझो गया काम तय।

अपना जमींदार, अगर भाई का कुछ काम हो जा ये खेत का, आ जा हल छोड़ के न और पाछे तना दिया जा, कोई नहीं बेरा बिचारा ने लोग बागा दे मेरा चादर फिर पानी देन चल है। अरो क्या का पाला पड़े को का बीस नदी का बड़ के न बेचारा मोरी में बाइकी में फंस जा, काटना पड़े जरूर। कैसे बताया वाला

0: ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है, पर भगवान अपने बनाए हुए बंधु में कभी भेद नहीं करता।
1: भगवान की भक्ति और शक्ति को जानिए।
2: जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का।
3: वास्तु कृष्णा के साथ हर सुबह दिन की शुरुआत जीवन को रूपांतरित कर देने वाली बातें सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर सुबह 4 बजे से 8 बजे तक भक्ति और भजन रोजाना सुनना ना भूलिए। सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 रेडियो सुभारती रेडियो।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ
4: रख विश्वास, तू है शिव का।

0: भगवान बुद्ध कहते हैं, जीवन में किसी भी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
1: बुद्धं शरणं गच्छामि।
0: अब सुनिए बुद्धवाणी हर रविवार सुबह 6 बजे से वास्तु कृष्णा के साथ, सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: तू अकेला भी है तो गम न कर, तेरे साथ वो है।
1: रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन
0: पावर ऑफ हनुमान।
2: यतो धर्मस्ततो हनुमान, यतो हनुमानस्ततो जय।
0: हर मंगलवार वास्तु कृष्णा के साथ सुबह 6 बजे से सिर्फ शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।
2: कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है।
0: पावर ऑफ हनुमान।
3: जय श्री राम।
4: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
0: बुद्धं शरणं गच्छामि। अब सुनिए बुद्ध वाणी हर रविवार सुबह 6 बजे से वास्तु कृष्णा के साथ।
5: हर दिन के पल को चेतना में जी, जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में, ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो।
4: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
0: बुद्धं शरणं गच्छामि।
6: कृपया ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज।
7: गाड़ी संख्या 9.00 यानी 90.0 सुभारती एक्सप्रेस जल्द आ रही है शाम 5 बजे से वास्तु कृष्णा के साथ सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।
6: हम आपकी सफल सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं।
7: मेरठ का नंबर 1 रेडियो।
6: वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी कंफर्टेबल एंड सेफ जर्नी।
8: दीदी ना ना ना।
0: अब सुनना ना भूलिए हर सैटरडे स्पेशल वास्तु कृष्णा के साथ दोपहर 1 बजे शाम 5 बजे ओनली ऑन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
9: एक बार फिर से आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर। आपकी पसंद के तराने रागनी देसी गाने चलते हैं और बात करते हैं कि हमारे किसान भाई किस प्रकार से गांव में रहकर ज्यादा कमाई कर सकते हैं, सरकार से किस प्रकार हम मदद प्राप्त कर सकते हैं, कुछ अलग हटकर अगर हम करना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए तैयार है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग होनी चाहिए तो सरकार आपको लोन देती है, सब्सिडी भी देती है। अब एक योजना की बताता हूं मैं आपको बात, PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना। यदि आप जैविक खेती, जिसको आजकल बहुत फैंसी भी माना जाता है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको कहा जाता है, प्राकृतिक खेती यानी अब से 40-50 साल पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग नॉर्मली करते थे ये वही है, समय बदल गया और कहते हैं कि एक समय बीतने के बाद फैशन खुद को दोहराता है और यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग खुद को दोहरा रही है दोस्तों। तो समय की डिमांड है, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत जबरदस्त डिमांड है, तो सरकार बीज खाद और पैकेजिंग के लिए 50,000 प्रति हेक्टेयर तक की मदद 3 साल के लिए देती है। इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप रिसर्च कर सकते हैं, अगर कुछ और इस बारे में इस विषय में जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर भी ट्राई कर सकते हैं और डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। 9639012111 हमारा नंबर है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन, इसके तहत भी सरकार आपको लगभग 40-50% तक की सब्सिडी देती है, मुर्गी फार्म के लिए भी देती है, आपको मछली पालन के लिए भी देती है, बकरा पालन के लिए भी देती है, गाय पालन के गौशाला के लिए भी देती है। आप बताइए आपको क्या करना है, सरकार तो हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है, जरूरत है हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको अपना गांव छोड़कर दूर दराज किसी शहरों में जाना पड़े और अपने गांव की मिट्टी को छोड़कर कहीं दूर जाना किसी को पसंद नहीं होता, सब जाते हैं सिर्फ कमाई के चक्कर में, तो कमाई कर सकते हैं आप शुरू अपने गांव में।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे
4: हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुबह आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
0: जय हिंद दोस्तों, यह है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो। आपकी पसंद के तराने, रागनी, देसी गाने सब होते हैं इस जय जवान जय किसान कार्यक्रम में। और हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप गांव में रहकर कैसे ज्यादा कमाई करें। सरकार आपकी मदद करने के लिए तैयार है, सरकार आपको देती है सब्सिडी, आपको देती है लोन, आप बस बताएं कि आपको करना क्या है। जैसे अगर आपके पास जमीनें कम है तो आप कुछ ऐसी फसलें ट्राई कर सकते हैं जो आमतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी नहीं होती थी। उसके लिए आपको पॉली हाउस या नेट हाउस, वो जो खेत में बड़ा सा तंबू आपको नजर आता है, ये वही होता है। इसमें बहुत पैसा लगता है, इसलिए सरकार आपको 40-50% तक भी पैसा देती है, आपको सब्सिडी देती है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अगर आप फसल को किसी और तरीके से करना चाहते हैं तो आपको ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम को लगाने के लिए भी सरकार पैसा देती है। आप अगर चाहते हैं कि आप मशरूम की खेती करें, आप मशरूम से कुछ करना चाहते हैं, तो सरकार इसकी ट्रेनिंग देती है पहले, फिर उसके बाद आपको लोन भी देती है, तरीके भी बताती है। उसके बाद आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो भी सरकार मदद करती है। इसमें आपको 50,000-60,000 के आसपास तक 3 साल के लिए सरकार देती है। आपको सही से इसके बारे में जानकारी पता करनी होगी। मधुमक्खी पालन करने के लिए 40-50% तक की सब्सिडी देती है। मछली पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए और गौशाला के लिए, भैंस पालन के लिए, यहां तक कि डेयरी उद्योग के लिए भी आपको सरकार पैसे देती है। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ हम सब्सिडी लेने के लिए करेंगे या सिर्फ सरकार से लोन उठाने के लिए करेंगे तब हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, गांव में रहकर एक नहीं, इतने सारे बिजनेस हम खड़े कर सकते हैं कि जिसके जरिए हम शहरों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। जैसे गांव में रहकर आप डेयरी उद्योग करेंगे तो दूध पहुंचा सकते हैं, दूध के साथ मावा, दही, पनीर, मट्ठा, घी, ये सब बेच सकते हैं। आप गांव में रहकर एक कोल्हू या कलेसर लगा सकते हैं, जहां पर गुड़, शक्कर, खांड इत्यादि बनाकर आप शहरों में बेच सकते हैं। ऑर्गेनिक गुड़ की बहुत ज्यादा डिमांड है। मुजफ्फरनगर तो पहचान बना चुका है अलग अलग किस्म के गुड़ बनाने के लिए। जो परंपरागत तरीके से कोल्हू चलते थे, अब वो पुराने जमाने की बात हो चुकी है। नई टेक्नोलॉजी के साथ में एकदम साफ सफाई का ध्यान रखते हुए तरह तरह के फ्लेवर वाले गुड़, सौंफ वाला गुड़, तुलसी वाला गुड़, इस प्रकार के न जाने कितने फ्लेवर के गुड़ यहां से दूसरे देशों में भी सप्लाई किए जा रहे हैं। यानी अब अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सरकार आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस आपको अपना मन बनाना पड़ेगा।

जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। कार्यक्रम है जय जवान जय किसान। हमारे किसान भाई बैंक से सरकार से किस प्रकार मदद प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय में आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। तो वैसे तो केसीसी के बारे में आपने खूब सुना ही होगा, ये वो लोन होता है जो तकरीबन हर किसान ने लिया होता है सरकार से। इसमें मिनिमम ब्याज दरों पर बैंक आपको लोन देता है और किसानों की मदद करने के लिए इस तरह की योजनाएं होती हैं। लेकिन सिर्फ एक या दो योजनाएं नहीं होती है, किसानों के लिए कई सारी योजनाएं हैं। हमें क्या करना है पहले में वो डिसाइड करना होगा। कई किसान भाई लोन लेकर अपनी जमीनों पर थोड़ा लोन उठाकर कुछ पैसा खेती में लगाते हैं और कुछ दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं। जैसे कुछ किसान भाई तो लोन उठाकर भैंस या गाय भी खरीद लेते हैं, बैंक देता है लोन, सरकार इसको इसके लिए प्रोत्साहन करती है। तो गाय या भैंस खरीद कर वहां से अपना डेयरी का काम शुरू करता है, दूध का काम शुरू करता है। एक पूरे परिवार को तकरीबन एक भैंस या एक से एक भैंस और एक गाय पूरे परिवार को पाल सकती है। इतनी कमाई करके उनका दूध से आप अर्जित कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी AIF, मशरूम का शेड बनाना हो, कोल्ड स्टोरेज बनाना हो, क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन लगाने की आपकी मन हो, 2 करोड़ तक का लोन सरकार देती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे जरूरी है ट्रेनिंग। सरकार को चाहिए पहले कि क्या आपने इस चीज की ट्रेनिंग की है क्या, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे वो आप बकरी पालन करना चाहते हो, मछली पालन करना चाहते हो, मशरूम आप बोना चाहते हो, या कुछ भी आप करना चाहें, आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि परंपरागत तौर पर हम सबको ये करना नहीं आता है। एक बार आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप आगे की फाइल के सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। 50-60 हजार रुपए से लेकर 2-3 करोड़ तक का लोन सरकार बड़ी आसानी से देती है। बस जरूरत है हमें कुछ कर गुजरने की सोच रखने के लिए। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, केसीसी इसको बोल देते हैं, हर किसान जानता है, किसान कृषि कार्ड इसको बोलते हैं। और उससे क्या आप मधुमक्खी पालन, गाय पालन या भैंस या कोई भी काम कर सकता है किसान इन पैसों को लेकर। अगर कोई और सरकारी योजना की जानकारी आप चाहते हैं तो नंबर है 9639012111। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम है आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुबह आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर हमको राणा जी ने इतनी काम की बात बताई है कि अगर आपके घर में टीबी का मरीज हो जाता है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, परहेज रखना है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे परिवार का भी एक ट्रीटमेंट चलता है, वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क होता है। सर, अगर कोई जानना चाहे टीबी के बारे में, ज्यादा जानकारी लेना चाहता, अपना इलाज कराना चाहता है, तो आप लोगों से या सरकारी सिस्टम से वो किस तरह से सहायता प्राप्त कर सकता है?
1: देखिये, वैसे तो पूरे मेरठ को डिसेंट्रलाइज करके सरकार ने हर व्यक्ति के नजदीक में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सब जगह टीबी की जांच के इलाज की सुविधाएं शुरू की हुई है। बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पैरेलल अस्पताल है, वरना कोई जहां भी रहता हो, वो मेरठ में शहर में रहता हो, वो ममाना, वो हस्तनापुर, वो भूड़बराल, वो सरदना, जहां रहता हो उसके ब्लॉक में, उसके आसपास में छोटे बड़े अस्पताल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी ऐसी लेनी हो तो मैं अपना नंबर यहाँ दोहराने जा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति निसंकोच टीबी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मुझे फोन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। मेरा नंबर है 9917717273। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ अपना नंबर 9917717273। तो कोई भी शंका होने पर, कोई भी जानकारी, किसी भी आवश्यकता में, कोई भी आपका श्रोता निसंकोच मुझे फोन कर सकता है।

0: आज के इस खास एपिसोड में आपने देखा और सुना कि टीबी का जो रोग है, सरकार की पूरी कोशिश है कि 2025 तक इसको पूरी तरह से हिंदुस्तान से, हमारे देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। आप भी अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और जैसे कि सर ने हमको यहां पर अपना नंबर भी बता दिया है, तो अगर कभी आपको टीबी से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, इस रोग से संबंधित कोई दवाई कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इलाज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप इनको भी फोन कर सकते हैं। सर, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपको कोई संदेश जनता के लिए?
1: बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी व्यक्ति सावधानी रखें, खासतौर से टीबी के रोगी अपने मुंह पर कपड़ा लगा के रखें, मास्क लगा के रखें, खांसते छींकते थूकते, और अपना इलाज पूरा करें
0: जी।
1: इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप एक आदर्श नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं, आदर्श रोगी होने का फर्ज निभाते हैं
0: जी।
1: और बाकी सरकार और हम पूरा सिस्टम हमेशा इस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी के साथ है। और मैं फिर से आजाद हिंद चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि इतना जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम उन्होंने लिया, अपना समय दिया, और मैं समझता हूँ कि जरूर इस जानकारी से हमारे शहर के, हमारे देश के बहुत लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, सुनते रहिए सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के संग। जय हिंद।

0: जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। और अब आप सुनेंगे एक खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ, और ये कार्यक्रम है सेहत सही लाभ कई। मध्यम और गंभीर एनीमिया कब और कैसे IVFCM मदद कर सकता है, आज का टॉपिक यही है। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ सेहत सही लाभ कई के इस अगले अंक में। मुझे तो आप जानते हैं, मेरा नाम है वास्तु कृष्णा। पिछले कार्यक्रमों में हमने इसी विषय में बात की है कि गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है, या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और किन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। तो सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी, दोनों का मैं स्वागत करता हूँ
1: जी। धन्यवाद धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
0: जी। सेहतिया सिंह जी, बताइए जरा, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने हल्के, मध्यम और गंभीर

0: छोटी सी कहानी सुनते हैं और ये कहानी हमको हमारी टीकन देवी जी सुनाएंगी।
1: देखो, जो आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ना आप सभी को
0: जी,
1: वो असल में सुनीता की है। अब मैं आपको बताऊँ, सुनीता का चल रहा था सातवां महीना।
0: अच्छा जी।
1: कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आ रहे थे।
0: अच्छा।
1: तो थोड़ी दूर जब भी चलक रही तो उसे सांस फूलने की बीमारी सी हो गई।
0: अच्छा।
1: उसे टेंशन हो गई, घर का काम भी मुश्किल लगने लगा।
0: अच्छा।
1: जने जने कितना काम हो। घर वाले सोचते थे कि ये तो गर्भावस्था में होता ही है, तो ज्यादा कुछ टेंशन की बात ना है। लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच की गई और रिपोर्ट में पता क्या चला?
0: क्या चला?
1: उसे मध्यम एनीमिया था।
0: ओ माय गॉड, यानी फिर क्या हुआ उसके बाद?
1: फिर क्या, स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझा गया, आगे सलाह भी दी गई उसे, और परिवार को भी समझाया गया कि ये केवल कमजोरी ना है बल्कि उसे इलाज की जरूरत है।
0: सेहतिया सिंह जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाता है तो डॉक्टर को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए या वो देते हैं ध्यान?
2: देखो, ऐसा होगा जी, डॉक्टर पहले स्थिति की गंभीरता को देखेंगे। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं।
0: अच्छा,
2: यू हो जाए।
0: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
2: जी बिल्कुल, IVFCM हर किसी के लिए नहीं है। ये एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद ही लिया जा सके है।
0: ऐसा है ना सेहतिया जी, अब बहुत सारे दोस्त हमारे सुन रहे हैं लेकिन उन सबको नहीं पता कि ये IVFCM होता क्या है। तो मैं चाहता हूं कि आसान भाषा में हमारे तमाम मेरठ के श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को जरा समझा दीजिए कि ये IVFCM होता क्या है।
2: बिल्कुल बतावेंगे जी, और आसान भाषा में समझावेंगे, थारी वाली भाषा में, हमारी वाली भाषा में। देखो, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM कोई अलग दवा है या कोई जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझें तो ये शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है जिसमें आयरन नस के रास्ते दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जावे है या डॉक्टर को लगे है कि तेजी से सुधार जरूरी है, तब यो वाला विकल्प चुना जावे, इसका विचार करा जावे इस पे।
0: अच्छा, यानी ये एक सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है?
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, यो बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिला की स्थिति को समझा जाता है, उसके बाद डॉक्टर निर्णय लेते हैं।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार होता है।
2: बिल्कुल सही कहा जी आपने, यही कारण है हम बार बार कहते हैं पहले जांच, फिर सलाह, फिर उपचार।
0: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
2: हाँ जी, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में यो दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक महिला को देखा भी जावे है और कुछ स्थिति सामान्य रहे तब आगे की कार्यवाही भी होवे। फिर
0: क्या ये अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जा सकता है?
2: ना जी, ऐसा जरूरी तो ना है, लेकिन यो हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही किया जा सके।
0: यानी आपका मतलब ये है कहने का कि अपने मन से उपचार करवाना ठीक नहीं, जैसे कि अक्सर हम लोगों की आदत होती है ना कि अपने खुद से मन से डॉक्टर बन जाते हैं और कोई भी इलाज करवा लिया, कोई भी ट्रीटमेंट ले लिया।
2: ना जी ना, ऐसा बिल्कुल ना करना। सही रास्ता हमेशा जांच और डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में हो तो वही बढ़िया।
0: टीकन देवी जी, आप क्या कहेंगी?
1: देखो, मैं भी एक बात जोड़ना चाहूँ। कई बार क्या होता है, परिवार डर जाता है कि ड्रिप लगेगी तो बीमारी बहुत बड़ी हो सके, लेकिन ऐसा जरूरी ना है। IVFCM जो होता है वो एक प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सके, लेकिन ये केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही दिया जाना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सेहतिया जी, एक बात और, कई श्रोता हमारे लिसनर्स ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार ही क्यों करते हैं?
2: इसका भी बता दें मैं जी।
0: जी
2: देखो, बात यो है क्योंकि मध्यम या गंभीर एनीमिया केवल कमजोरी का विषय ना है, यो माँ और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके। माँ और बच्चे दोनों के लिए तो हो गया यो, इसलिए जब डॉक्टर को लगे है कि आयरन की कमी को जल्दी और प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है तब वो IVFCM जैसे विकल्प पे विचार कर सकते हैं।
1: और बिल्कुल सही कहा आपने, सेहत

0: जी, और मैं एक बात परिवारों से भी कहना चाहूं
1: जी
0: कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह देवे तो उसे लेकर डरे ना, अफवाहों में ना पड़े, पहले पूरी जानकारी लें, सवाल पूछें जो भी आपके मन में आ रहे हैं, और स्वास्थ्य कर्मी की बात को भी समझने की कोशिश करें।
1: जी सेहतिया जी, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिला की कमजोरी को दूर करना होता है?
2: ना जी, ऐसा तो ना है। इसका बड़ा उद्देश्य जो है वो माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम में योगदान देना है। मतलब उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, और जब एनीमिया का समय पर इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में इससे बढ़िया मदद मिल जा।
1: यानी फायदा केवल माँ को नहीं बच्चे को भी हो सकता है।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है? टीकन जी आप बताएं इसके बारे में।
0: जी बिल्कुल बताऊंगी। देखो, परिवार की बहुत बड़ी भूमिका। पहला, गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से लें। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को लेके भी जाएं।
1: अच्छा,
0: उसमें बिल्कुल देरी ना करें।
1: ठीक है।
0: और तीसरा, जांच में साथ जाएं, उसे अकेले ना भेजें।
1: अच्छा।
0: चौथी बात मैं बताऊं आपको, गोली समय पर हो और सही तरीके से उसकी महिला की मदद करें।
1: ठीक है।
0: और इससे अगली बात ये कि किसी परेशानी की स्थिति अगर हो रही है तो स्वास्थ्य कर्मी से बात जरूर करें। और आगे बताऊं, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे रहा है ना, तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद भी करें।
1: अच्छा।
0: क्योंकि इसमें कमजोरी भी आ जा जब एनीमिया हो जा। और सातवां बताऊं आपको,
1: बताओ,
0: घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करावें उसे।
1: अच्छा।
0: और आठवां, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष न दें बार बार।
1: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है सेहतिया जी?
2: बिल्कुल हो जी, निगरानी होनी चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए। देखो, अंग्रेजी का शब्द आ गया मेरे मुंह से
1: जी।
2: आगे बात करूं तो महिला की पुनः जांच होनी चाहिए, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी उसे। ठीक है, पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है, ये सबसे बढ़िया बात है।
1: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना बेहद जरूरी होता है।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, संपर्क बनाए रखो जी।
1: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं के बारे में बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी। सेहतिया सिंह जी आप क्या कहेंगे?
2: गलत। IVFCM देने का निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, केवल ड्रिप लगने का मतलब यो ना है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
1: यानी IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए। टीकन जी आप क्या कहेंगे?
0: ना ना, ऐसा भी ना है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। IVFCM जो होता है वो हर महिला के लिए नहीं होता, ये केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जावे जहां डॉक्टर को उसकी आवश्यकता दिखाई दे।
1: अगर IVFCM लग गया तो आगे किसी जांच या फॉलोअप की जरूरत नहीं रहती?
2: क्यों ना रहती जी, ये तो गलत बात है। फॉलोअप तो जरूर रखना चाहिए, निगरानी जरूर रखनी चाहिए। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी की जाती है, ऐसा नहीं होता।
1: बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं क्योंकि घर पर ही डॉक्टर बुला लेते हैं, घर पर ही सारी चीजें कर ले, तो क्या IVFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
0: देखो मैं बताऊं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जावे, घर पर ये बिल्कुल नहीं होने का।
1: यानी अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए सेहतिया जी?
2: ना गलत है यो, ऐसा भी ना है। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग अलग हुए है, उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होता है।
1: वाह वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया जी और टीकन जी। इसी के साथ ये प्रोग्राम दोस्तों समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य हैं। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच करवाइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन जरूर करना चाहिए। कुछ स्थितियों में IVFCM

0: जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं। क्यों टीगन जी?
1: और मेरी तरफ से एक और संदेश मैं देना चाहूँ, सारी बात आपकी बढ़िया लगी मुझे
0: जी,
1: लेकिन एक बात ये भी है कि खून की कमी को कभी भी लंबा ना खींचना चाहिए, चाहे गर्भावस्था हो या ना हो। लेकिन गर्भावस्था अगर चल रही है तो समय पर जांच करवाना बड़ा जरूरी, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिला को परिवार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए।
2: देखो जी, मैं तो एक बात कहूँ, यो बात याद रखने लायक है, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम संभव हो सके हैं, इसलिए जांच करवाओ और देखभाल बढ़िया सी रखो जी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और दोस्तों, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव के बाद की अवस्था यानी PNC के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
3: अरे स्मार्ट NGO प्रस्तुत करता है।

जय हिंद। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे ये खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ।

दोस्तों आज हम बात करेंगे टीबी नामक रोग के बारे में, यानी क्षय रोग। अगर समय पर पहचान हो जाए तो टीबी का पूरा इलाज संभव है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इस बीमारी का नाम क्षय रोग, टीबी रोग या ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ये सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों, दिमाग, किडनी और रीढ़ की हड्डी में भी ये हो सकता है। हमारे एक एक्सपर्ट डॉक्टर के अनुसार नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में ये बीमारी हो सकती है। टीबी फैलती कैसे है? जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या जोर से बोलता है तो हवा में छोटे छोटे कीटाणु फैल जाते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें सांस के साथ अंदर ले ले तो उसे भी ये संक्रमण हो सकता है। ध्यान रखें, टीबी हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, खाना साथ में खाने से या एक दूसरे के कपड़े छूने से नहीं फैलती। टीबी के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों, 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक लगातार खांसी रहती है, बलगम में खून आता है, बुखार विशेषकर शाम के समय चढ़ता है, रात में ज्यादा पसीना आता है, तेजी से वजन घटता है, भूख कम लगती है, कमजोरी और थकान ज्यादा महसूस होने लगे। यदि ये लक्षण दिखाई दें, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क कीजिए। सरकार पूरी तरह से निशुल्क आपको इसका पूरा इलाज मुहैया कराती है। सरकार टीबी के मरीजों की किस प्रकार और मदद करती है? सबसे पहले सरकार का एक लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत। सरकार द्वारा टीबी की जांच निशुल्क की जाती है, पूरी दवा बिल्कुल निशुल्क मुफ्त दी जाती है, मरीज का इलाज और नियमित फॉलोअप भी किया जाता है। इलाज के दौरान पोषण के लिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत मरीजों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वे पौष्टिक भोजन कर सकें। कई स्थानों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीज के घर तक दवा पहुंचाते हैं और दवा नियमित लेने में भी मदद करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज आपको दिखता है जिसको टीबी हो सकती है या किसी को टीबी है, उसकी मदद आपको भी करनी चाहिए। टीबी की दवाएं सरकारी अस्पताल पर बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। आप इन्हें हमेशा समय से लेकर तयबद्ध तरीके से खाएं। इलाज को पूरा करना है, कभी भी इलाज को बीच में नहीं रोकना है। एक बार टीबी की दवा शुरू होने पर अगर आप इलाज बीच में रोकते हैं तो कुछ समय बाद टीबी वापस लौट कर आती है और पहले से ज्यादा भयानक रूप के साथ आती है, यानी पहले जो टीबी हुई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक इस बार ये बनकर लौटी है। बीमारी दोबारा लौट सकती है, पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है, दवाओं का असर भी कम हो जाता है और इस बार टीबी को नाम दिया गया है MDR टीबी, यानी पहले से भी भयानक टीबी। इसीलिए कभी भी टीबी बीमारी की दवाइयों को रोकना नहीं है, इलाज पूरा करवाना है। डॉक्टर जितने महीने जितने समय दवा खाने के लिए बोले इलाज पूरा कराएं। आपकी तमाम जांचें बिल्कुल निशुल्क सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं, सभी दवाइयां सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। सरकार मरीज को पैसे से भी मदद करती है, दवाइयों से भी मदद करती है और समय समय पर निक्षय पोटली यानी के खाने के लिए प्रोटीन युक्त कुछ चीजें भी देती है। तो आगे से हमेशा हमें ध्यान रखना है, लगातार खांसी रहे तो जांच कराएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढक लीजिए, घर में ताजी हवा और धूप आने जाने का रास्ता हमेशा होना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, धूम्रपान, तंबाकू और शराब से दूरी बनानी है। डॉक्टर ने जो बात बताई है, जो दवाइयां बताई है, उनको नियमित रूप से और पूरा लेना है। कोई भी दवा बीच में नहीं रोकनी, अपनी मर्जी से कोई दवा बढ़ानी नहीं है, कोई दवा घटानी नहीं है। मरीज के संपर्क में जो लोग आ गए हैं उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए। अगर किसी परिवार में किसी को टीबी है, उस परिवार के तमाम लोगों की जांच निशुल्क होती है, करानी चाहिए। छोटे बच्चों की भी जांच करानी चाहिए और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए।

और अंतिम संदेश, याद रखिए टीबी छिपाने की नहीं इलाज कराने की बीमारी है। बहुत से लोग टीबी को छुपा कर रखते हैं, सामाजिक शर्म की वजह से, हीन भावना की दृष्टि से बचने की वजह से। लेकिन दोस्तों, टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। जिन लोगों ने सरकार की मदद से टीबी का पूरा इलाज कराया है, आज वे बिल्कुल अच्छी तरह से स्वस्थ हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। इसीलिए अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर संपर्क कीजिए या आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। आज की ये कड़ी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्मार्ट एनजीओ, जिसे आपने सुना सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चलते चलते मिलकर संकल्प लें, टीबी को हराना है, भारत को टीबी मुक्त बनाना है।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
6: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
5: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। बातें करेंगे बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, जो कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, वकील और शिक्षक थे, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता के रूप में जाना जाता है। जनता ने उन्हें आदर से लोकमान्य यानी जनता द्वारा स्वीकृत नेता की उपाधि दी थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहते थे। अब प्रारंभिक जीवन की इनकी बात करें तो इनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। इनका जन्म 23 जुलाई साल 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से साल 1877 में गणित में स्नातक किया और बाद में 1879 में कानून की डिग्री यानी कि LLB की डिग्री प्राप्त की। योगदान के बारे में बात करें तो शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने साल 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और न्यू इंग्लिश स्कूल तथा फर्गुसन कॉलेज की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। बातें आगे चलती रहेंगी, आपको जाना कहीं नहीं है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM मेरे यानी पंकज के साथ।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820262 35 మ్యాక్స్ టచ్.

मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। हम बातें कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। अब इनके सार्वजनिक आंदोलन और उत्सव के बारे में बातें करते हैं। भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने और लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए इन्होंने दो बड़े सार्वजनिक उत्सवों की शुरुआत की, जो आज भी भारत में बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। पहला है गणेश उत्सव साल 1893। ये इसलिए था ताकि सभी जातियों के लोग एक साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकें। इसके बाद शिवाजी उत्सव साल 1895, युवाओं में देश प्रेम और वीरता की भावना जगाने के लिए ये उत्सव इन्होंने शुरू किया था। बातें चलती रहेंगी, आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं, हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पंकज और हम बातें कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। इनके पत्रकारिता और साहित्य के इतिहास के बारे में भी बात करें तो इन्होंने देशवासियों को जागरूक करने के लिए दो प्रमुख समाचार पत्र निकाले जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करते थे, जिनमें पहला था मराठा और ये अंग्रेजी भाषा में छपता था। इसके बाद दूसरा था केसरी जो कि मराठी भाषा में छपा करता था। अपने क्रांतिकारी लेखों के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। साल 1908 में इन्हें राजद्रोह के आरोप में 6 साल के लिए म्यांमार की मांडले जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए इन्होंने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इसके बाद आगे बात करें इनके अंतिम समय की तो मांडले जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने साल 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। 1 अगस्त 1920 को आज का मुंबई और तब का बॉम्बे में इस महान नेता का निधन हो गया। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कोटि कोटि नमन। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, NH 58 सुभारतीपुरम मेरठ में।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। चलिए अभी करते हैं हम एक अच्छी वाली बात, जो ये कहती है जो बुरे वक्त में भी काम करते हैं अच्छा वक्त उन्हीं का आता है। सीधा और सिंपल सा मतलब है, आप टाइम के अकॉर्डिंग बदलेंगे नहीं, आपका टाइम पर जो काम होना है उसे आप अपना टाइम पर ही करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि अगर आज आप टेंशन में हैं तो आप अपना काम छोड़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे तो ये सही है। अपना काम हमेशा पूरा रखिए और उसे सही से कंप्लीट कीजिए। किसी भी बात का बहाना मत ढूंढिए कि मेरी तबीयत खराब थी, या मेरे सर में दर्द हो रहा था, या मेरे हाथ में दर्द था, या मैं देख नहीं पा रहा था। और भी तरह तरह के रीजन होते हैं लोगों के पास काम से बचने के लिए। अपने काम को जब वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो अक्सर बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, और वो बहाना किसी भी तरीके का हो सकता है, इलॉजिकल हो सकता है। और चलिए मान लीजिए आप बहाना भी नहीं बना रहे हैं, मगर आपका काम तो आपको ही करना है, फिर चाहे वो अब करें या बाद में, तो फिर शुरू में ही क्यों ना कर लिया जाए। सो इसलिए अपने काम को समय पर करें, उससे काम चोरी ना करें। बाकी ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। ऐसी ही अच्छी वाली बात आप भी चाहें तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। सुनते रहिए आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

रंग रूप या वजन, इनको लेकर किसी का मजाक ना उड़ाएं। हर इंसान अपने आप में खास है। खूबसूरती दिल में होती है, दिखावे में नहीं। सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता नहीं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना पिंदास आरजे पंकज। अच्छा, ये कई बार देखा गया है सड़कों पर, जब भी लोग कार से जा रहे होते हैं या बस से जा रहे होते हैं तो कुछ भी वो खा रहे होते हैं ना, बिस्किट हुआ, नमकीन हुई, तो उनके रैपर तुरंत अपनी कार के शीशों से बाहर फेंकते हैं, या बस से सफर कर रहे होते हैं तो बस के शीशे से बाहर फेंकते हैं, एंड कुछ लोग तो पी करते हैं। ये कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो दूसरे को परेशान कर देती है। कैसे परेशान करती है मैं बताता हूँ आपको, और आप भी बराबर सोचते रहिएगा, ठीक है। क्या होता है कि जब भी आप बस से जा रहे होते हैं या कार से जा रहे होते हैं और आपने कुछ खाया वहाँ पर, बिस्किट ही खाया फॉर एग्जाम्पल, तो उसका तुरंत आप रैपर बाहर फेंक देते हैं। वो रैपर जाकर कोई मान लीजिए आपके पीछे साइकिल से आ रहा है या बाइक से आ रहा है, तो वो तुरंत उसके मुंह पर जाकर लग सकता है, एंड तुरंत उसके बाद उसको थोड़े टाइम के लिए तो ब्लैंक हो जाएगा ना, वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि तब तक वो पन्नी हटेगी नहीं या रैपर हटेगा नहीं, तब तक तो ऐसा होगा ही। और कुछ लोग अब जो पीक कर देते हैं, पीक करते हुए भी ऐसा होता है, आप तुरंत बस के बाहर या कार के बाहर पीक करते हैं, वो उड़ता उड़ता किसी दूसरे के ऊपर जाकर गिर जाता है। तो आप इमेजिन कीजिए वो कितना गंदा लगता है कि दूसरे का पीक आपके ऊपर आकर गिर गया। आप खुद को उनकी जगह रख के सोचिए एक बार, जो आपके पीछे चल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा देखभाल कर ये क्या कीजिए। इनफैक्ट कूड़ा कचरा तो फेंकना ही नहीं चाहिए, चलती हुई सड़क पर तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है, धीरे धीरे ही सही सड़कें भी गंदी रहनी शुरू हो जाती हैं, वहां पर भी रैपर्स ही बिखरे रहते हैं। तो इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ये अपने नेचर में कुछ अच्छी आदतों में जोड़ना चाहिए कि कहीं पर भी अननेसेसरी पीक ना करें, कहीं पर भी अननेसेसरी कूड़ा ना फेंकें, ठीक है। मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, आप तक इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, सो मैंने बात की। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे क्या मैंने कहा है और इसको मानेंगे भी। फिलहाल बातें यूं ही चलती रहेंगी, आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, NH58 सुभारतीपुरम मेरठ में।
1: गाड़ी चलाते समय कांवड़ियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आपकी एक लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है। इसी संदेश के साथ सभी शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। बच्चों पर प्रेशर नहीं, उनका भरोसा बनिए। उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें खिलने दीजिए। स्ट्रेस फ्री बचपन, बेहतर भविष्य। तो बस सही समय पर सही तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और एकदम लाइव आपसे यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। और मैं अकेले ही यहाँ पर आपसे बातें नहीं करता, आपके जो मुझ पर मैसेजेस आते रहते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर, उन मैसेजेस को भी मैं पढ़ता हूँ। वैसे फिलहाल मुझे मैसेज किया हुआ है साहिल ने हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, जो लिखते हैं कि सर मुझे रोका सॉन्ग सुनना है आरनेत का। तो चलिए साहिल के रिक्वेस्ट को हम पूरा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपसे भी हम कहना चाहेंगे अगर आप भी किसी ट्रैक की रिक्वेस्ट हमसे करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जा सकते हैं और वहां पर इनबॉक्स में अपने रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। बाकी साहिल आप एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। आइए मिलकर इस कांवड़ यात्रा को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। सभी शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

सुनसान सड़क, अकेलापन और एक अजनबी जो मदद मांग रहा है। आपका दिल पिघल जाता है, आप मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, पर क्या आप जानते हैं ये एक जाल हो सकता है। आजकल सुनसान रास्तों पर लूटपाट और अपराध के लिए अजनबी मदद का नाटक करते हैं। इंसानियत जरूरी है, पर आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। सुनसान जगह पर गाड़ी कभी ना रोकें, अपने शीशे और दरवाजे बंद रखें। अगर कोई मुसीबत में लगे तो सीधे पुलिस को फोन करें। सचेत रहें, सुरक्षित रहें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार और बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे प्यारे मेरठ वासियों। अब आपके शहर में आपको सेहत की देखभाल के लिए टेंशन नहीं देनी, क्योंकि अब आपकी सेहत की देखभाल के लिए शहर में एक नया और आधुनिक ठिकाना आ गया है। जी हाँ, श्रीनिधि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। ये केवल एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि आपकी सेहत का नया साथी बनेगा। और इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं माननीय जस्टिस विवेक चौधरी जी दिल्ली हाई कोर्ट से, जो अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन करेंगे। बाकी आपको बताता चलूं, इस भव्य उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए यहां पर उपस्थित रहेंगे डॉक्टर श्याम मोहन, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर निधि अग्रवाल, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट रोहिताश्वा कुमार अग्रवाल, मेंबर एंड फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सतीश चंद्र गुप्ता, फॉर्मर प्रेसिडेंट मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ, एंड यहां पर मीडिया पार्टनर होंगे स्वयं मीडिया एंड प्रोडक्शन आशीष गौतम जी। तारीख होगी 2 अगस्त 2026, समय दोपहर 12 बजे से लगातार। एंड एड्रेस भी फटाफट आपको मैं बता देता हूँ, C20/C21 सेक्टर 5 जागृति विहार गढ़ रोड LLRM मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने मेरठ में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप तुरंत नोट कर सकते हैं, इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी जो होता है 9759123778। तो मेरठ वालों, इस 2 अगस्त रविवार को दोपहर 12 बजे से इस ग्रैंड ओपनिंग का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: कांवड़ यात्रा को बनाए स्वच्छ यात्रा, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही डालें। इसी प्यारे संदेश के साथ आप सभी शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जय हिंद। ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना पिंता सार्ज पंकज, जो एकदम लाइव आपसे बातें कर रहा है और पूरी एनर्जी के साथ यार मैं यहाँ पर होता हूँ अपने शो में। फुल एनर्जी के साथ आपसे बातें करता हूँ और जो भी बातें आपके साथ साझा करता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे से सुने और अच्छे से समझें। फिलहाल अभी हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने अभी हमें अपनी फरमाइश, अपनी रिक्वेस्ट भेज दी है। ये कह रहे हैं कि सर मुझे सॉन्ग सुनना है कुरी का, गाने का नाम है तेरी गलियों में, और इन्होंने अपना नाम बताया है सुबोध। तो चलिए जी सुबोध, आपको निराश नहीं करते हैं और प्ले करते हैं आपका ये सॉन्ग, आपका ये गाना आपके ही अपने रेडियो स्टेशन पर, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।
1: कांवड़ यात्रा करते समय स्वास्थ्य खराब होने पर तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में जाएं, लापरवाही ना बरतें। इसी संदेश के साथ आप सभी शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और देखिए, यहां पर तो हम आपसे बातें करते ही रहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर, तो कनेक्ट हो जाइए और कनेक्ट होकर आप हमसे वहां पर भी बातें कर सकते हैं। हम क्या नया करने वाले हैं या कौन नए गेस्ट होने वाले हैं हमारे किसी प्रोग्राम के, वो सभी अपडेट्स आपको वहां मिल जाती हैं तमाम डिटेल के साथ। तो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो जल्दी कनेक्ट हो जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाते हैं और फेसबुक पर भी। फिलहाल आपको जाना कहीं नहीं है, जुड़े रहिए, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

प्रशासन द्वारा बनाए गए ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करें, जाम से बचें, समय बचाएं। इसी संदेश के साथ सभी शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटखा थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें, विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारी ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: दफ्तर की थकान और दिन भर की भागदौड़, अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का और अच्छी नॉलेजेबल बातें सुनने का, वो भी प्यारे गीतों के साथ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं, इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता, बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए, अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम। सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: छुपके जितना रोया हूं मैं, तुमको भी उतना कभी रोना पड़ेगा। सिर्फ मेरा टूटना काफी नहीं है, तुमको भी तो मुंतशिर होना पड़ेगा।
1: सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं लौटूंगा थोड़ी ही देर में।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313.

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहाँ पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है, और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं।
1: जी जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है, उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी

0: जितने भी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्ह हैं।
1: सर अभी जैसे हमने आफ्टर ट्वेल्थ की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो, सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
1: सर अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं 12वीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों, वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
0: देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरे तो वो अपने आप को साबित कर सके। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
1: सर अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल ट्वेल्थ करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है विजिट के लिए, एक बार बता दीजिए।
0: देखिए बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों को जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस, साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए रिसेप्शन पे, हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
1: सर हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
0: जी जी पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज है, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारी लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं, आईआईटीज, एनआईटीज और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं। वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
1: सर एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
0: देखिए एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए, वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके आपका एडमिशन हो जाता है।
1: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को, उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर ट्वेल्थ आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहां पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे, आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी के गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनकी हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसके हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत

0: गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में. एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है. एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है. थैंक यू.
1: जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरव वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस. आई हैव टेकन माय एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय रिसर्च एट AIU एंड ऑल्सो प्रेजेंटेड माय बायोमेडिकल बेस्ड स्टार्टअप एट AIU. केरव वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस इज अ वेरी गुड कॉलेज. इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द फैकल्टी हेयर आर वेल एक्सपीरियंस. दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट आउट देयर. The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
2: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता, वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है. एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माय करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है. यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है. करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है. यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है, जिसमें से एक था मदर डेयरी विच इज माई ड्रीम कंपनी. आगे जाकर मैं फूड इंडस्ट्रीज में काम करना चाहती हूँ एज अ फूड एनालिस्ट, ताकि मैं फूड सेफ्टी इंश्योर कर सकूँ फॉर अ बेटर इंडिया. ओवरऑल सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर प्लान्स को शेप करने में मेरी हेल्प कर रहा है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. जय हिंद, जय भारत.
3: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम जानवी है और मैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ. मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ.
4: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस.
3: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है. इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं.
4: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस. इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट. और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप. हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को. और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए. थैंक यू सो मच.
3: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना. और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं. मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं. थैंक यू सो मच.
5: तो अभी आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए और आप भी आइए केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए. आप इस साल 12th कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर 12th होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं. बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी. चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे हम.
6: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क. मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी.

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920085।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।

0: Sharnaxis.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: पढ़ाई तो सब जगह होती है, पर एक्सीलेंस का होना भी तो जरूरी है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी इज द रोड टू एक्सीलेंस विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद अ सलूब्रियस एनवायरनमेंट, हाईली एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंट फैकल्टी।
1: 18 कॉलेजेस एंड 220 प्लस प्रोग्राम्स। विजिट www.subharti.org।

0: जय हिंद। कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी मेरठ,
1: अ प्लेस वेयर सोल्जर्स आर बॉर्न टू सर्व द नेशन।
0: वी इम्पार्ट ट्रेनिंग टू यंग एस्पिरेंट्स हु एम टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस टू सर्व द मदरलैंड।
1: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी, जहां कराई जाती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के लिए कली ट्रेनिंग। रिटन एग्जाम्स जैसे NDA, CDS और SSB इंटरव्यूज को भी करें एक बार में क्लियर विद सुभारती डिफेंस एकेडमी।
0: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी उनके लिए जो नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा करना चाहते हैं।
1: तो आज ही ज्वाइन करें। फॉर मोर क्वेरीज यू मे कॉन्टेक्ट 9045954341 एंड 9068899913 और यू कैन ऑल्सो विजिट www.subhartidefense.com।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभ आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुबह आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।

प्रथम पूज्य देवता भगवान गणपति, उनको विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक कहा जाता है। कोई भी शुभ कार्य उनकी पूजा के बिना अधूरा माना जाता है।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
6: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।